FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शुद्ध आज शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि है। तदनुसार 11 मई 2026 सोमवार का दिन है। हमारी आज की प्रातकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:05 हो चुके हैं। आपको बताते हैं दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 का समय है चिंतन का। 6:15 पर आप सुन पाएंगे वंदना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन पाएंगे 6:15 पर। 6:45 का समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। इसके पश्चात 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार चूरू। 8:00 दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन पाएंगे झलकी और 8:45 पर जयपुर से कार्यक्रम समाचार तरंग। 9:00 आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से और इसके पश्चात 9:10 पर देशगान। 9:15 का समय फिल्मी कव्वाली का कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक। 10:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन पाएंगे आप उमंग। 12:30 का समय लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का। 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से और इसके पश्चात 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन। 2:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 का समय होगा ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स का। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम युववाणी। इसके पश्चात 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 का समय संस्कृत में समाचार का। इसके बीच 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 6:30 का समय आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण का, जिसके अंतर्गत पहले आप सुनेंगे 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। 7:00 का समय किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का। इसके पश्चात 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या। 9:00 आप सुन पाएंगे News@9। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर दिल्ली से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 जयपुर से खेल जगत। 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब समय है चिंतन का। चिंतन के लिए आज हमारा विचार है किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह आप बने, उससे आपको सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि मन में भी खुशी महसूस होगी। श्रोताओं, इस बात को अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि किसी को अगर आप

अपने वचन से, अपने कार्य से खुशी देते हैं, तो वो खुशी आपको भी अंदर से महसूस होती है। आपने देखा होगा, कभी कोई बच्चा रो रहा है किसी चीज के लिए, और ऐसे में आपने उसको वो चीज पकड़ा दी, वो चुप हो जाता है। कई बार वो चुप होने के साथ हंसने भी लगता है, उससे आपके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये इस प्रकार का जुड़ाव होता है कि जब हम सामने वाले के चेहरे के भाव महसूस करते हैं, तो स्वतः ही हमारे दिलो दिमाग पर भी उसका असर होता है और शारीरिक तौर पर हमें वो महसूस होने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, महसूस किया होगा, आप कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म में सामने वाला मुस्कुराता है, तो आप उस सीन में इस तरीके से अपने आप को खोए रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप भी उसके साथ ही मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपने सीन में इस प्रकार का दुख भरा कोई सीन क्रिएट कर रहा है, वो रो रहा है, तो ऐसे में आपकी आंखों से भी अचानक ही आंसू आने लगते हैं। आप भी उस संवेदना को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये जुड़ाव व्यक्ति का अपनी आंखों के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से जो जुड़ाव होता है, उसके परिणाम स्वरूप हम इस प्रकार के भाव महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में इन भावों के माध्यम से ही अगर आप समझें, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को खुश करते हैं और उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उससे स्वतः ही हमारे चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, हमारे दिल में भी एक ऐसी खुशी महसूस होती है जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता है। और आप ये महसूस करेंगे कि उस पल आप पूरी तरह से अपने आप को उस स्थिति से एकाकार होता हुआ महसूस करते हैं। आपका जुड़ाव इस प्रकार से हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। यानी ये क्षण आपकी समाधि का क्षण इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं कि अगर उस क्षण को आप देखना चाहें, तो आपको बरबस ही ये महसूस होगा कि हम अचानक ही एक गहरी समाधि में चले गए, एक गहरे ध्यान में चले गए। हम उस चीज से, उस स्थिति से एकाकार हो गए। इसलिए अपने जीवन में ये प्रयास करें कि आप अपने माध्यम से किसी भी व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करें। ये व्यक्ति हो सकता है, ये हमारी गलियों में घूमने वाला एक जानवर हो सकता है, एक ऐसा प्राणी हो सकता है जो बोलकर आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने हावभाव के माध्यम से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। और ऐसे में आप महसूस करेंगे कि उसको जो खुशी मिली है, उससे वो खुशी आपको भी प्राप्त हो रही है। कहा गया है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और ये देखा भी गया है, हम जो बोते हैं वही फसल उगती है और उसी को हम काटते हैं।

और कर्मों के माध्यम से भी ये बात हमने बहुत सुनी है, बहुत पढ़ी है और अब भी सुनते रहते हैं। जैसा करेंगे वैसा प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर आप अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छा बोएं। चिंतन में इतना ही। और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का।

अनोखी अदा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा मोहम्मद, माफ़ कीजिएगा, मजरू सुल्तानपुरी ने, और इसे संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनोखा रिश्ता। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं आयशा भोंसले की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। अगला गीत फिल्म आंसू बन गए फूल। गायक कलाकार आशा भोंसले किशोर कुमार। इस गीत को लिखा गोविंद मुनीश ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से। इस गीत को लिखा गुलजार ने और इसे संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

गोरा और काला, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लेखन आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम गीत बहार।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं रजिया सुल्तान फिल्म का गीत, जिसे लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया है खय्याम ने।

रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

धन्य है अवध निवासी जहाँ स्वयं सच्चिदानंद राजा के रूप में विद्यमान है। उनकी छत्र छाया में इनका जीवन कृतार्थ हो गया है। एक दिवस मुनिवर वशिष्ठ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। समुचित आदर सत्कार पाकर कुलगुरु प्रेम विफल हो गए। उन्होंने राजा राम को वो प्रसंग सुनाया जब उन्होंने ब्रह्मा के आग्रह पर सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। बोले, यूं तो पुरोहिती कर्म बहुत अच्छा नहीं होता, इसी कारण वेद पुराण स्मृति सभी ने इसकी निंदा ही की है। किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ये भार इसलिए ग्रहण करने का परामर्श दिया था कि एक दिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण कर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। अतः जो स्थिति योग यज्ञ दान और तपस्या से प्राप्त होती है वो उन्हें इसी कर्म यानी पुरोहिती के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने याचना की, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में आपका प्रेम अक्षुण्ण बना रहे, कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत सतीश भाटिया का। श्रोताओं, इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। तो नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: शुद्ध हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू, और मैं हूँ आपके साथ आपका साथी राजीव। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में अगर हम बात करें कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर ऊपर उठना चाहे यानी सफल होना चाहे, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उसको आवश्यकता होती है? अब कोई कहेगा पैसे होने चाहिए, अच्छा पद होना चाहिए तो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा सकता है। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अगर एक ऐसी बात, एक ऐसा गुण जिसके बल पर व्यक्ति जीरो से और पता नहीं कितनी संख्या तक पहुंच सकता है, उसकी अगर बात करें तो उस शब्द में आपको क्या याद आता है? मेरे हिसाब से आपको शायद याद आएगा अनुशासन। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन है, वो अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम अनुशासन पे ही बात करते हैं। तो इसके लिए आपको बताएं कि अनुशासन सफलता की सीढ़ी है। यानी किसी मंजिल तक पहुंचना है तो सीढ़ी पर तो चढ़ना पड़ेगा, ऐसे कूद के तो नहीं जा सकते। तो जो सीढ़ी है वो अनुशासन की ही होती है। अब आप सोच सकते हैं कि मान लो आपकी परीक्षा है, 2 महीने बाद है या 1 महीने बाद है, कभी भी समझ लो 2 महीने पकड़ते हैं, 2 महीने बाद है और आप आज किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं कर रहे। एक दिन आपने पूरे दिन लग के खूब पढ़ाई की और दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन फिर लगा कि कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ लेता हूँ, आज कल वाला कवर कर लूँगा, और आपने जो है तीसरे दिन भी खूब पढ़ाई कर ली। चौथे दिन हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आपका मूड नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपकी वो पढ़ाई छूट जाएगी। और जब समय आएगा 1 महीने बाद परीक्षा का, उस समय आप पाएंगे कि मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर आप नियमित रूप से 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आवश्यक थे वो अगर नियमित रूप से देते, तो फिर आप मान सकते हैं कि 30 दिन में 180 घंटे आप उस कार्य के लिए दे सकते थे जिसके लिए आपको तैयार होना था। ये होता है अनुशासन। अब जीवन में हर व्यक्ति सफल तो होना चाहता है, कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई सफल व्यापारी, कोई महान कलाकार, लेकिन इन सब सफल लोगों में एक ही बात समान होती है, वो होता है उनका अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने समय, अपने व्यवहार, अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार होना, ये सबसे आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीता है वो धीरे धीरे सफलता की ऊंचाई तक निश्चित रूप से पहुंचता है। आप ये देखिए, आपने जीवन में सफल व्यक्ति भी देखे हैं और असफल व्यक्ति भी देखे हैं। आप उनकी दिनचर्या को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे जो व्यक्ति अनुशासित रहा, वो व्यक्ति जिस लक्ष्य के लिए अनुशासित रहा उसमें वो सफल हुआ। आप ऐसा कोई भी उदाहरण अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हुआ। सफलता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। अब कोई ये कह सकता है फला व्यक्ति ने बहुत तैयारी की लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तैयारी की लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ चाहिए। जो तैयारी जिस प्रकार से की जानी चाहिए थी, जितनी की जानी चाहिए थी इस कंपटीशन में, क्या उतनी वो व्यक्ति कर पाया? क्या वो व्यक्ति अपने आप को इस स्थिति में रख पाया कि दूसरों से वो अपने आप को बेहतर साबित कर पाए? अनुशासन उसने रखा होगा, सुबह से लेकर शाम तक का उसने एक अपना टाइम टेबल भी सेट किया होगा कि मुझे इस समय ये पढ़ना, इस समय ये नहीं पढ़ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिली तो निश्चित रूप से उसका आकलन करने की जरूरत है और जो कमी रह गई उसको उस अनुशासन के साथ दोबारा करने की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना अनुशासन के कोई व्यक्ति सफल हुआ है। बड़े बड़े उदाहरण हमारे समक्ष है। अगर हम दो चार ही लें, हम लेते हैं उदाहरण सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट में रोज घंटों अभ्यास करते थे, समय की बहुत कद्र करते थे और अपनी फिटनेस और खेल पर पूरा ध्यान देते थे। उनके कोच रमाकांत आचरेकर उन्हें लगातार मेहनत और अनुशासन का महत्व समझाते थे और इसी अनुशासन ने उन्हें दुनिया का महान बल्लेबाज बनाया। वरना कौन जानता था बहुत से सचिन तेंदुलकर आए और चले गए लेकिन कुछ विशेष करने वाले अपना नाम छोड़ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं विराट कोहली की। अपनी जीवन शैली पूरी तरह अनुशासित बनाई, जंक फूड छोड़कर सख्त डाइट और नियमित व्यायाम अपनाया। उनकी फिटनेस दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। आज हम जो बड़े बड़े स्टार देखते हैं, उनकी चमक देखते हैं, लोग उनको देखते ही उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके सिग्नेचर लेना चाहते हैं। हमें लगता है कितनी अच्छी लाइफ ये जी रहे हैं लेकिन उस लाइफ तक पहुंचने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है उसका हमें शायद ध्यान नहीं है। आप अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं। शूटिंग पर समय से पहुंचने के लिए वो जाने जाते हैं और इतनी उम्र में भी नियमित दिनचर्या का पालन करते और लगातार काम करते रहते हैं। उनका अनुशासन ही उनकी लंबी सफलता का कारण है। उनके समय के बहुत से स्टार जब आप आज देखते हैं तो वो बूढ़े लगते हैं, रिटायर लगते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन में आज भी आपको एक एनर्जी महसूस होती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासन के पीछे है। एक नाम लें APJ अब्दुल कलाम का, सादगी और अनुशासन। बेहद अनुशासित, रोज पढ़ाई, रिसर्च और काम के लिए निश्चित समय रखते थे और कठिन परिस्थितियों में भी अपना अनुशासन नहीं छोड़ा और भारत के मिसाइल मैन बने और फिर हमारे राष्ट्रपति बने। PV सिंधु, मेहनत और नियमित अभ्यास। सुबह उठकर जल्दी अभ्यास करती थी, वर्षों तक अपने आप को मोबाइल मनोरंजन से दूर बनाकर सिर्फ खेल पर ध्यान दिया और इसी अनुशासन ने ओलंपिक पद दिलाया। तो दोस्तों, आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो समर्पण देना होगा अनुशासन के साथ। आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू।
4: जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया।
5: इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी।

शुद्धों आप सुन रहे हैं घातक फिल्म का ये गीत और कार्यक्रम है नमस्कार चूरू। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे दांतों पे। दांत पता है आपको हर व्यक्ति के लिए हर जानवर के लिए ये जरूरी है। और एक चीज आपने देखी होगी कि आदमियों के दांत तो टूट जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जबकि बहुत से प्रिकॉशन आदमी रखता है। लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के दांत टूटे हुए या फिर उनमें कीड़ा लगा हुआ देखा? नहीं, ऐसी बीमारियां उनको नहीं होती, जबकि उनके पास विशेष केयर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो वो मंजन करते हैं, ना ब्रश करते हैं, ना दातुन करते हैं, फिर भी दांत बिल्कुल चकाचक। अब कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य बहुत सी ऐसी आदतें अपने जीवन में अपना लेता है जिसकी वजह से वो क्या तो दांत और क्या आंत सबको खराब करता है। इसलिए जरूरी ये है कि हम ध्यान रखें, जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है उनसे हम अपने आप को बचाएं।

आज इस कार्यक्रम में बात कर लेते दांतों पे। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर दांतों की देखभाल की बात करें तो दातुन का प्रयोग हमें करना चाहिए। आयुर्वेद में नीम, बबूल, करंज और खैर के दातुन को लाभकारी माना गया है और इसकी दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और कीटाणु नष्ट होते हैं। एक दूसरी चीज होती है जिसे कहते हैं तेल गंडूष, यानी ऑयल पुलिंग। आयुर्वेद में सुबह खाली पेट तिल या नारियल तेल को कुछ मिनट तक मुंह में घुमाने की सलाह दी जाती है। इसे कवल या गंडूष कहा जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? मुंह की दुर्गंध कम होती है, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार बनते हैं और बैक्टीरिया कम होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज आयुर्वेद में है जीभ साफ करना। आयुर्वेद में जीभ की सफाई को बहुत जरूरी माना है। तांबे या स्टील के टंग क्लीनर से जीभ साफ करने से विषैले तत्व जो हमारी जीभ पर इकट्ठे हो जाते हैं वो हटते और मुंह ताजा रहता है। इसके साथ चौथी बात करें तो संतुलित आहार। अत्यधिक मीठा, बहुत ठंडा, बहुत गर्म ये भोजन दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अपने मुंह को इनसे बचाएं। हरी सब्जियां, दूध, तिल, आंवला और फल दांतों को मजबूत करते हैं। पांचवी बात करें अगर प्रिकॉशन की तो मसूड़ों की मालिश। हम जो ब्रश करते हैं उससे हमारे मसूड़े खराब होते हैं, घिसते हैं, लेकिन अगर हम मसूड़ों की मालिश उंगली से करें तो सरसों के तेल में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर मसूड़ों की हल्की मालिश करने से मसूड़े मजबूत होते हैं। बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने घर में भी मंजन बना सकते हैं और उसको हम रोजाना उपयोग में ला सकते हैं। वो हमारे लिए फायदेमंद भी है, गुणकारी भी है और हर हिसाब से अच्छा है। लौंग और त्रिफला का उपयोग भी लोग करते हैं। लौंग का तेल दांत दर्द में राहत देता है। त्रिफला का काढ़ा मुंह साफ करने और मसूड़ों के लिए लाभकारी है और आयुर्वेद कहता है कि नियमित दिनचर्या आपकी बहुत आवश्यक है। देर रात तक जागना, अत्यधिक तनाव और गलत खान पान ये दांतों पर असर डालता है और असर बुरा। इसलिए अच्छी नींद और नियमित जीवन शैली अपनाएं और इससे आप देखेंगे न सिर्फ दांत बल्कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

शुद्ध हूँ, आप सुन रहे हैं एफएम चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू, और हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC U17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा U17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई U15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमी सेमीफाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत, हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं
1: FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है झलकी। झलकी का शीर्षक है मोटी मछली।
2: आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वीएम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
3: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
4: यस सर।
3: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
4: मक्खियाँ मोमो मक्खियाँ? सर मैं आपको मतलब नहीं समझा।
3: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
4: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
3: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को भांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
4: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
3: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों मिस पाउडर वाला?
5: Yes, boss.
3: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
5: परंतु अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
3: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
4: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
5: Yes sir, I also treat my every customer like my daddy.
3: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
4: मछली?
5: You mean a fish?
3: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
4: अच्छा।
3: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
4: झपट
3: लो। राइट,
4: हम तो पहले कस्टमर का पहुंच लिया जान ना पावे। सर वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया।
3: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
5: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
4: जाए कैसे मैं? सर
3: कस्टमर आया है।
5: कस्टमर ना कहिए सर।
6: वंडर, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक अच्छी मिलती है।
3: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़े से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
6: वेरी गुड, वेरी गुड। सर पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी।
5: हाँ,
6: मुझे काफी जान मिला। हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
3: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई।
6: मोटी मछली?
3: जी जी जी जी जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। मोटी मछली वो आप देखे ना सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
6: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
3: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद हैं सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
6: Oh, I see. You mean fat fish.
3: जी हाँ सर, fat fish. आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
5: Yes, course.
3: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
5: Sure.
3: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
6: मोटी मछली, ओह आई सी, इट्स अ रियली लवली फैट फिश।
3: सर ये मछली कितनी हैंडसम है, कितनी इनोसेंट है, बिल्कुल आपकी तरह। सर ये देखिए,
6: आई लाइक इट वेरी वेरी मच।
3: थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी चॉइस बेमिसाल है सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
6: मेरा छोटा बच्चा, ओह ही इज ओनली 5 months।
5: ओह गुड,
3: वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे। सर हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है, ये देखिए लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
6: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है।
3: ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, योर चॉइस इज वंडरफुल। सर ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है।
6: ऑटोमेटिक?
3: जी हाँ, यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर। और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है, जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं। मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर।
6: ओह आई सी, वेरी गुड।
3: आइए साहब इस तरफ आइए। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर। और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं, मिस पाउडर वाला।
7: गुड इवनिंग सर।
6: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
3: पाउडर वाला, बी टैक्टफुल, ये बहुत बड़ा कस्टमर है। मोटी मछली,
6: मछली।
7: ओके बॉस। सर आप सर हाथ आके देंगे?
6: यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
7: यस सर। ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है।
6: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका।
7: सर ये सेंट काटा मटा जैस्मिन सेंट का है।
6: काटा मटा जैस्मिन?
7: यस, काटा मटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है। सर जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा। और सर ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर। सर ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है, इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर। फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है, सब वन टू ऑल सब लगाता है, पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर। फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना। और सर ये देखिए, ओडोकोमन शैम्पू, इस शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर।
6: लेकिन ये शैम्पू,
7: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है। आई नो सर, आप तो सिर का गंजा है।
3: ओ मिस पाउडर वाला,
6: बच्चे चुप रहे,
3: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा।
7: आई एम सॉरी सर।
3: इट्स ऑल राइट सर, आई एम वेरी सॉरी सर, वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर।
6: डजंट मैटर, डजंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: बात क्यों नहीं है सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर, मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है मगर आप गंजे है नहीं, लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है लेकिन फिर भी बाल है लेकिन नहीं है लेकिन है, मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल है।
4: ओह यस
3: सर, आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू।
4: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
3: और सर इनसे मिलिए, ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर बी लाल।
8: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है। हुजूर आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं?

0: मेरा मतलब है बेंजो, गिटार, सारंगी, तानपुरा, तबला, ढोलक।
1: मुझे हर साज बजाने का शौक है।
0: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर साज बजाने का शौक है। और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: Why not?
0: तो सर, आप ताल, कहरवा, भैरवी, पारी ख्याल, मैदानी ख्याल, तीन ताल, चार ताल, नैनीताल, मल्ली ताल पसंद करेंगे, या दादरा तुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे, या फिर आप फिल्मी गाने?
1: झुमका गिरा रे अब्बा रे चो,
0: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आग मत।

0: जाना चले नहीं जाना चले नहीं जाना।
1: चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
2: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
3: पैर भी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
2: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है।
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, नाउ यू अंडरस्टैंड।
2: कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
1: यू आर राइट, यू आर राइट।
3: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
2: कोल्ड ड्रिंक।
3: सुनो सुनो सुनो,
1: इनके लिए
2: मैंगो जूस,
3: मैंगो जूस लाओ।
2: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
3: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
3: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
1: भाई आप मजबूर तो खाना ही पड़ेगा।
3: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
2: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
3: भैरवी लाल आज उस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
2: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
3: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए सर।
0: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था जी। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
3: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
0: व्हाट,
3: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यूं ही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
3: पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं
0: चला। चले गए, चले गए, चले गए।
3: मोटी मछली।
4: अभी आप सुन रहे थे झलकी मोटी मछली। इसके लेखक थे पीएम आनंद और प्रस्तुत थी जयदेव शर्मा कमल की। अगला प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से, जहां आप सुन पाएंगे समाचार तरंग।
5: समाचार तरंग में आप सभी का स्वागत।

0: श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सालेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये है जनगणना, यानी आबादी की गिनती। लेकिन जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं और महज आबादी की गिनती नहीं, वरन ये हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। जनगणना प्रक्रिया 2027 से जुड़े खास पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जनगणना निदेशक श्रीमान विष्णु चरण मलिक जी। नमस्कार सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, भारत में जनगणना का वैधानिक आधार क्या है और ये प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
1: जनगणना लोगों की केवल गणना नहीं है, ये पूरे समाज एक देश की तस्वीर हमारे सामने रखती है
0: जी।
1: देश के नीति निर्धारण में पूरी तरह से सहायक होता है, जैसे बहुत सारे अन्य जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, चाहे आप चुनाव की बात करें, डिलिमिटेशन की बात करें, और ना केवल सरकारी प्रयोग में ये लाया जाता है जो जनगणना के डाटा है, उसके साथ साथ जो हमारे जितने कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी यूज करते हैं, और शोधकर्ताएँ है जो हैं वो भी इसका यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, हर कोई जनगणना के डाटा को, ये क्योंकि एक ऑथेंटिक डाटा है पूरे देश का, इसका पूरी तरह से हर कोई उपयोग में लेता है।
0: सर, जनगणना में गिनती के अलावा कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा की जाती है और क्या ये संभव है कि सारी सूचनाएं एक ही बार में ले ली जाए?
1: जनगणना हम लोग दो चरणों में करते हैं, ठीक है। पहला चरण जो अभी अपन करने जा रहे हैं वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना
0: जी।
1: ये प्रथम चरण क्या है, ये मकानों के बारे में जानकारी हम लोग जुटाते हैं। ये द्वितीय चरण जिसको अपन जनगणना बोलते हैं, पॉपुलेशन एनुमरेशन बोलते हैं, ये उसके लिए ये जो एक आधार बनता है, ठीक है। पॉपुलेशन एनुमरेशन में हम जो लोगों के व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत मतलब जैसे एज, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, इन जानकारियों को हम लोग जुटाते हैं सेकेंड फेज में।
0: सर, इस बार की जो जनगणना है, यानी जनगणना 2027, वो पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही है, तो इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं और इसके प्रशिक्षण और प्री टेस्ट के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: आपने सही कहा, ये प्रथम बार पूरे भारत में डिजिटल जनगणना के रूप में इसको किया जा रहा है। और डिजिटल जनगणना की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि डिजिटल मोड में ये किया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी जनगणना की जो प्रक्रिया है एक CMMS पोर्टल है, उसी पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जनगणना करने वाले जो भी फंक्शनरीज है, चाहे प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, चार्ज अधिकारी, सबके वहाँ रजिस्ट्रेशन होना, सबके ID कार्ड जनरेट होना, सबके ट्रेनिंग होना, बैच बनाना, सबके अनरारियम का पेमेंट करना, वो सारा काम डिजिटल मोड में होगा। और क्या विशेषता है, मोबाइल जो स्मार्टफोन है उसमें एक HLO ऐप, जैसे फर्स्ट फेज को अपन HLO ऐप बोलेंगे, सेकेंड फेज में PE ऐप बोलेंगे, एप्लीकेशन से, तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का जो एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा, जो प्रगणक है, जो एनुमरेटर है, वो घर घर जाकर वो डेटा एकत्रित करेंगे। उससे पहले और एक महत्वपूर्ण गतिविधि अपन ने शुरू कर दी, वो है स्वगणना, कि हर नागरिक को पहली बार एक अवसर दिया गया है कि वो अपनी गणना डिजिटल मोड में पोर्टल में जाके वो कर सकता है।
0: यानी जब व्यक्ति अपना विवरण दर्ज करवाएगा तो उसे एक आईडी प्राप्त होगी।
1: तो वो जो स्वगणना पोर्टल है वो है scse.census.gov.in। ये पोर्टल सही तरीके से हमें टाइप करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। और पहली बार जब अपन लॉगिन करते हैं तो एक वो मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, क्योंकि स्वगणना या जनगणना के जो प्रथम चरण है ये मकान के गणना है, तो इसलिए मकान या हाउसहोल्ड या परिवार के जो मुखिया के नाम से ये जनगणना होगी। मोबाइल अपन दर्ज करेंगे तो उसमें एक पहली बार OTP आएगा
0: जी।
1: OTP आने के बाद ही वो पोर्टल खोलता है, फिर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद वो पूरा खुल जाएगा।
0: यानी परिवार का कोई भी सदस्य पूरे परिवार का ब्यौरा भर सकता है, लेकिन वो मुखिया के नाम से ही दर्ज होगा, और उसी के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी की
1: ओटीपी

0: ये प्रथम चरण में उसमें 33 प्रकार के सवाल है, और 33 प्रकार के सवाल को हम किस तरह से तीन कैटेगरी में अपन विभाजन कर सकते हैं। घरों में जब अपन रहते हैं तो किस तरह के घर में अपन रहते हैं, जो घर का जो निर्माण का जो प्रकार है तो निर्माण की जो विशेषता है उसके बारे में पूछा जाता है कि छत किस मटेरियल से बनी है, फर्श किस मटेरियल के, दीवार किस चीज की है, पक्का मकान है कच्चा मकान है, इसके बारे में। उसके बाद सुविधाओं के बारे में, मकान में अगर कोई रहता है कि सामान्य जीवन जीने के लिए उसके साथ उसके पास इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, पीने के पानी होना जरूरी है, स्नान घर होना जरूरी है, गैस सिलेंडर होना जरूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तीसरा सवाल है और सामान्य जीवन अपन जीने के लिए जैसे तीन तरह की चीज़ें अपन आवश्यकताएं की बात करें, जैसे अपन दूर दराज लोगों से बात करने के लिए हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल नंबर भी होना, मोबाइल फ़ोन होना भी ज़रूरी होता है। जाने आने के लिए हमारे पास कोई भी कोई साधन होना होता है, चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, किसी भी तरह से, इस तरह के सवाल पूछा जाता है। इवन दूरदर्शन या अपन जब बात करते हैं कि भाई न्यूज़ वगैरह देखने के लिए टीवी हो या मनोरंजन के लिए टीवी हो, उसके बारे में पूछा जाता है। ये इसको परिसंपत्ति अपन बोलते हैं, अन्य किसी तरह के कोई विवरण अपन नहीं लेते।
1: सर एक जिज्ञासा है हमारी कि अगर संयुक्त संपत्ति है तो जिसके तीन चार स्वामी है या एक संयुक्त परिवार है तो किसके नाम से फिर एंट्री दर्ज की जाएगी?
0: नहीं, घर के जो मुखिया है उनके नाम में परिवार का ब्यौरा लिखा जाता है, क्योंकि ये घर के बारे में अपन पूछ रहे हैं, व्यक्ति के बारे में कोई पूछे नहीं है, कोई संपत्ति के बारे में नहीं पूछ रहे। घर में क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसकी बात हो रही है, संपत्ति चाहे किसी के नाम भी हो।
1: जी सर, जनगणना में क्या सभी सवालों का जवाब देना अनिवार्य है?
0: जी, क्योंकि सवाल इतने कठिन नहीं है, सारे सरल सवाल हैं, और हाँ या नहीं में तो नहीं होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब ड्रॉप डाउन मोड में आ जाता है। ठीक है, कोई घर में रहता है तो पक्का घर होगा, आंशिक रूप से पक्का होगा, कच्चा मकान होगा, उसके सवाल में कोई किसी भी तरह जवाब देने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
1: अगर किसी को सवालों के जवाब देने में या साझा करने में कोई जानकारी संकोच है तो क्या प्रगणक द्वारा उनकी समझाइश भी की जाती है?
0: प्रगणक द्वारा ऑब्वियसली समझाइश की जाएगी, क्योंकि हम लोग स्वगणना की बात कर रहे हैं। स्वगणना एक क्योंकि एक वॉलंटरी एक्ट है और हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आप जब खुद जानकारी देंगे तो आप अपने हिसाब से देंगे, और आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है हर नागरिक के लिए।
1: सर अपने राजस्थान में 15 मई के बद से प्रगणक घर घर आएंगे और ये 14 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी, तो क्या इस दौरान एन्यूमरेटर को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़ेगी?
0: मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से, सभी नागरिक के, राजस्थान के नागरिकों से, कि जब प्रगणक आते हैं प्रगणक खुद अपने आईडी पहन के आएंगे, जो सेंसस कमिश्नर द्वारा, सेंसस विभाग द्वारा आईडी कार्ड उनको उपलब्ध होता है, जो आईडी में वो क्यूआर कोड भी होगा, कोई भी नागरिक उसको क्यूआर कोड को भी वो ये करके देख कर स्कैन करके वो देख सकते हैं, उसके वेरासिटी को पूरी तरह से वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रगणक वहाँ के स्थानीय ज़्यादातर टीचर होंगे, जो मोर और लेस जो वहाँ के नागरिक उनको जानते होंगे, उनके बच्चे पढ़े होंगे या वो खुद ही उन्होंने पढ़ाई की होगी उनके साथ या उनके अंडर, तो इसलिए किसी भी तरह से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: यानी प्रगणक और पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति है वो मुख्य रूप से शिक्षक वर्ग की
0: होंगी और स्थानीय शिक्षक वर्ग के होंगे। जहां तक दस्तावेज की बात है, मैं निवेदन करूं किसी भी तरह से कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैडम, कि हम लोग जब ये जो जानकारियां जब जुटाते हैं, व्यक्तिगत या हाउस होल्ड जानकारियां होती है, परंतु अपन जब इसको स्टैटिस्टिकल मोड में रखते हैं डेटा के रूप में, वो एक ग्रामीण या तहसील, जिला, राज्य स्तरीय डेटा में या नेशनल स्तरीय डेटाबेस में रहेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, मान लीजिए पूछा गया कि ऐसे माने किसके घर में मोबाइल है, किसके घर में लैंडलाइन है, ठीक है, अब उसको डेटा को कैसे किया जाएगा, जैसे उदयपुर जिले में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास मोबाइल टेलीफोन नहीं है या लैंडलाइन टेलीफोन नहीं है, उसी हिसाब से डेटा आता है। ऐसा नहीं आएगा कि विष्णु मल्लिक के घर पास मोबाइल है या नहीं, वो जानकारी किसी भी तरह ना किसी को पता नहीं होता है, ना विष्णु मल्लिक को कभी पता चलेगा, ना किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी विभाग को, किसी भी तरह से, जो व्यक्तिगत या हाउस होल्ड डेटा जो है वो किसी को कभी भी पता नहीं होता
1: है। निजी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी जो है वो पूरी तरह से गोपनीय है,
0: 100% धारा 15 सेंसस एक्ट जो है यही गोपनीयता के ऊपर बार बार जोर देता है कि हर जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, हाउस होल्ड डाटा, हर तरह की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
1: सर एक

0: सामान्य नागरिक में बहुत सामान्य सी जिज्ञासा होती है कि अगर मैं जनगणना प्रक्रिया में भाग लूंगा या लूंगी तो उसके बाद मुझे सरकार की कौन सी योजनाओं का फायदा मिलने वाला है, या अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कौन सी योजनाओं से नाम कट सकता है।
1: जहां तक योजनाओं के फायदा या नाम कटने की बात है, जनगणना में जिम्मेदारी माने भाग लेना नहीं भाग लेने के साथ किसी भी तरह से कोई ताल्लुकात या किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है।
0: सर, राजस्थान की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से भी और विविधता की दृष्टि से भी बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। ऐसे में जनगणना के दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए क्या तैयारियां की गई है?
1: मैं निवेदन करूँ, राजस्थान में 51 प्रमुख जनगणना अधिकारी हैं, जो 41 जिला कलेक्टर और 10 नगर निगम के आयुक्त भी हैं, ठीक है। फिर 759 हैं जो चार्ज अधिकारी। चार्ज अधिकारी कौन है? रूरल एरिया में जो चार्ज अधिकारी होते हैं तहसीलदार हैं, अर्बन एरिया में जो यो नगर पालिका या कमिश्नर नगर परिषद होते हैं वो होते हैं, तो वो 759 हैं। उन चार्ज अधिकारी के अंडर प्रगणक और सुपरवाइजर जिनकी संख्या है 1,33,000, तो ये 1,33,000 प्रगणक और सुपरवाइजर काम करेंगे। प्रगणक के अधीन में क्या आता है? प्रगणक के अधीन एक HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आता है, मकान शुचीकरण ब्लॉक आता है। एक मकान शुचीकरण ब्लॉक क्या होता है कि 800 करीब आबादी या 150 से 200 मकान जिसमें होते हैं, तो उसका एक ब्लॉक बनता है। उसी ब्लॉक का जो मुखिया होता है वो प्रगणक होता है, और 6 प्रगणकों में एक सुपरवाइजर होता है जिसका काम है सुपरविजन करना, पूरी तरह से नियमित रूप से उनके मॉनिटरिंग करना। तो उसी हिसाब से इसको किया गया है। गर्मी का दिन है तो गर्मी से निपटने के लिए भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया। राज्य सरकार के तरफ से हर तरह के सहयोग भी मिल रहा है, हर तरह के डायरेक्शंस वगैरह नीचे जारी किए जा रहे हैं कि जो 12 बजे से लेकर 3 बजे जो प्रगणकों को मना किया जाता है कि आप उस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय मत जाइए, और कैप वगैरह पहने, हाइड्रेशन पूरी तरह से रखें, और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था कलेक्टरों द्वारा भी की गई है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई दिक्कत होगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह के इंतजाम, हर तरह की तैयारी हमारे तरफ से पूर्ण कर ली गई है।
0: सर, अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप आम जन की जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जरूर जरूर, मुझे ये अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं सभी नागरिकों से यही निवेदन करना चाहूँगा। जनगणना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के बाद जो डेटा आते हैं उस डेटा के आधार पर हर तरह की योजनाएं, हर तरह के कार्यक्रम, प्रशासनिक प्रक्रियाएं वगैरह होती है, बजट का आवंटन होता है, सारा कुछ होता है, और इसमें आपके दिए गए जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और जानकारी का एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसी का ही केवल यूज़ किया जाता है, कोई व्यक्तिगत कोई पारिवारिक जानकारी का किसी भी तरह से कोई यूज या किसी भी तरह से कोई शेयर किसी के साथ नहीं किया जाता है। और इसको अपना दायित्व, अपने राष्ट्रीय दायित्व और वैधानिक दायित्व समझते हुए आप आगे बढ़ें, इसमें भागीदारी निभाएं, स्वगणना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, क्योंकि 15 तारीख तक हम लोग स्वगणना करने जा रहे हैं, बाद में 16 मई से 14 जून तक जब प्रगणक आपके घर में आएंगे, कृपया आप उनके पूरी तरह से सहयोग दीजिए, और हर तरह के जो सवाल करेंगे, जो 33 सवाल करेंगे जो ऑलरेडी अधिसूचित है, उन सवालों का आप जवाब बेफिक्र होकर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
0: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मलिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस बातचीत से सभी श्रोताओं को जनगणना के महत्व, प्रक्रिया और उसमें अपनी भागीदारी के प्रति जागरूकता मिली होगी। आपको बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुप्रियो बनर्जी, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ अभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
2: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उड़ता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
0: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कड़ेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से

0: बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
1: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मुख पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सके। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

ही अब सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और अब प्रस्तुत है कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम महफिल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम महफिल। इसके अंतर्गत सुन रहे हैं कव्वाली। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रलोक, जिसमें आपको सुनवाएंगे किसी एक कलाकार पर आधारित कार्यक्रम

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल FM 102.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और ये केंद्रित है संगीतकार राजेश रोशन पर।

राजेश रोशनलाल नागरथ, ये पूरा नाम, जिसे बाद में प्रसिद्धि के तौर पर देखें तो राजेश रोशन के नाम से प्रसिद्ध हुए। 24 मई 1955 मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार बड़े भाई राकेश रोशन, जो कि प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हैं और अपने समय के प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे, और अभिनेता ऋतिक रोशन राजेश रोशन के भतीजे। पिताजी रोशन, वो भी खुद संगीत के क्षेत्र से ही, फिल्म इंडस्ट्री से ही संबद्ध थे। राजेश रोशन ने लगभग सभी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान जूली फिल्म के गाने से हुई, जिसमें उनको लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया। हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का श्रेय अगर कहा जाए तो वो श्रेय जाता है महमूद को, जिन्होंने राजेश रोशन को अपने फिल्म में संगीत निर्देशन के लिए सबसे पहले चुना था।

श्रोताओ, ये वो गीत है जूली फिल्म का जिसने राजेश रोशन को पहला फिल्म फेयर बेस्ट संगीत निर्देशक का अवार्ड दिलाया। राजेश रोशन बचपन में संगीतकार नहीं बल्कि

एक सरकारी नौकर बनना चाहते थे, पर पिता के देहांत के बाद उन्होंने संगीत में रुचि लेना शुरू किया। राजेश रोशन की पहली गुरु उनकी माँ इरा रोशन थी। पिता की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने अपने नाम के पीछे नागरथ सरनेम लगाना छोड़ दिया और अपने पिता को याद रखने के लिए उनके ही नाम को अपना सरनेम बना लिया, और इससे राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, जो कि आज फिल्म इंडस्ट्री के तीनों बहुत बड़े नाम हैं।

70-80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी ऐसी जोड़ियों का बोलबाला था, उस दौर में एक नए संगीतकार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एंट्री ली। उसने अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनों से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। मशहूर संगीतकार राजेश रोशन पिछले 5 दशकों

से इंडस्ट्री में सक्रिय है और बहुत बेहतरीन गीत बेहतरीन फिल्मों के साथ दिए, और इनके गीत ऐसे थे जिन्होंने फिल्म को हिट करवाने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि कर्ज, कोयला, जूली, करण अर्जुन, पापा कहते हैं, कहो ना प्यार है, कृष, काबिल जैसे सैकड़ों फिल्मों में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। बेहतरीन संगीत देने के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर की बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें शुरुआत की तो मशहूर कॉमेडियन और एक्टर महमूद साहब ने राजेश राशन को पहला मौका दिया था जब उनकी फिल्म थी, नाम था कुमारा बाप। इस फिल्म के एक गाने की सज रही गली मेरी अम्मा, इस गाने के लिए धुन के तलाश में थे महमूद साहब। तब किसी ने राजेश राशन का नाम सुझाया, महमूद साहब ने उन्हें बुलाया और धुन बनाने को कहा। राजेश राशन ने ऐसे धुन बनाई कि उसे सुनते ही महमूद जी ने उन्हें गले लगा लिया और इस तरह उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन के बारे में।

संगीतकार इंदिवर के साथ राजेश रोशन की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी थी और बहुत से फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया।

श्रोताओं, ये गाने हैं राजेश रोशन के बेहतरीन संगीत के नमूने। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन के बारे में कार्यक्रम चित्तूर।

FM चूरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइने भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया, और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, आप ऐसे आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: तो इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सिटिंग करते थे इनके घर पे, गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते थे बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है
1: जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो,

0: तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें। अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी
1: दोस्ताना जी।
0: शायद, वो उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी
0: दुश्मनी, थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए,
1: जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ
0: बोला हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया जब गाने वाने। अब साहब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? साहब दिलीप कुमार
1: अरे बाप रे।
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उतना ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: वो कहानी नहीं है।
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: हाँ दिलीप कुमार की फिल्म लॉन्च हो रही है।
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे हैं।
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए वो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है वो, उसका ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
1: हाँ
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज ए राइटर। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी ज़्यादा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू
0: सिलसिला
1: किया।
0: वाला काम शुरू कर दिया।
1: जी
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली
1: शक्ति
0: नहीं, शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल।
0: मशाल, मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो।
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया।
0: मैं नहीं बोल सकता था,
1: जी
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब का।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: सुनाया
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से और आके हमको सुनाए। बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया, लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त। तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनकी कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे, वासुदेव धीरी साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही थी। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी झुककर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो हो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह, क्या बात है।
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी वो वहाँ के थे, पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब रहे बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे।

0: ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
1: जी जी
0: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
1: दिलीप कुमार,
0: प्रदीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: प्राण,
1: ऋषि कपूर,
0: अमरीश पुरी,
1: अमृता,
0: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
1: जी
0: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
1: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
0: हाँ तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
1: जी
0: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
1: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
0: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
1: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
0: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
1: जी जी
0: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
1: जी,
0: पहले मीटिंग हो चुकी थी
1: जी।
0: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें, एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
1: ओ ओ ओ,
0: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
1: था,
0: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म है, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेट पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बुलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह
0: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है। तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज़ यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब था वो रिलीज के चक्कर में, बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं, जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे, और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल

0: दी थी।
1: जी जी जी,
0: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद करते हैं।
0: देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी,
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले

हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11:05 पर आप सुनेंगे समूह स्वरों में देशगान। 11:10 पर सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे से। राजस्थानी लोक रचनाओं का दैनिक कार्यक्रम माटी के स्वर प्रसारित किया जाएगा दिन में 12:30 पर। इस कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार होंगे शमीम जोधपुरी। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 से। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे बचत, निवेश और पैसा, क्या वास्तव में खुशियां खरीद सकता है। एक और चर्चा होगी किसी का भी विश्वास ना टूटने दें। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:30 पर। सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे छोटी शुरुआत बड़ा मुकाम, नवाचार आज की जरूरत। इसे कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सेल्फ मेड पर्सन किसे कहते हैं। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:10 पर देशभक्ति फिल्मी गीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, इसका प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे से। किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। एक और चर्चा होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस कार्यक्रम में बाजार भाव, मौसम की जानकारी, कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा के अलावा हमारे किसान भाई सुन सकते हैं कुछ राजस्थानी लोकगीत और लोक भजन। प्रसारण का समय रहेगा शाम 7 बजे का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज रात 9:15 से। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा रात्रि 9:30 का। आज रात 10 बजे खेल जगत कार्यक्रम हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं रात्रि 10:30 से। सभा के समापन में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11:10 होने वाले हैं। अब सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। इस कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट, यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
3: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति चिन्ह प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
3: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल।

फूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव

0: फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे, वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: Manaha Shiva Sankalpamastu Shumukhaschaye

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा

0: पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhav

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है और आशुतोष जी इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं भगवान शिव से जोड़ा जाता है तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे तो एकानन भगवान विष्णु चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं अ उ और म तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है पेट के पास से आता है वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से छाती के पास से सीने के पास से ये आती है और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं और
1: ध्वजारोहण
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन ये एक प्रात सवन मध्य सवन और सायं सवन तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं एक गहन डूब जाते हैं हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं किस अवस्था में रहते हैं तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से वो भगवान शिव हैं इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया पुराणों में बोला गया और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी जो विरासत है उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड incidentally Neelam, today is the very day that the first president of India Dr. Rajendra Prasad had inaugurated the reconstructed Somnath temple on the 11th of May 1951 and Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi. From Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam, the government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर में इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
3: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the road show. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
5: आज जो संकट है, उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
4: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarter-final match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो है उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते

0: रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वह लोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता होता है, भले ही वो छोटा मंदिर हो, लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग। यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है। लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए, किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले

0: And the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and

0: the Sri Ram Lala Temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp has been now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
0: उभरी। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत

चुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया।
इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा।
हमें विकास

इतिहास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास

0: अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की

शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन समूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीवद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है।

0: में एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीददारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही, साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीददारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री, खो, बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंछरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ, बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव है। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चिरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगन ले हाजिर हूँ मैं इंदु, तो घणो स्वागत है थारो कार्यक्रम में। मोकलो मोकलो और करा मोकला मोकला, राम राम। भेणो आपने ई कार्यक्रम के मायने आप अपने घर परिवार की बात करा, ई के अलावा कोई विशेष दिन हो है भी की बात करा। अभी भेणो गर्मी बहुत पड़ रही है और ई गर्मी से आपने बचाव रखनो है। आप जब भी घर से बाहर जावा तो आपने शरीर ने अच्छी तरह से ढक करके बाहर निकला, और ई मौसम के मायने खासकर हल्के रंग का कपड़ा पहना और हल्के रंग में सूती वस्त्र पहना, ताकि आपनों जो बाहर निकला भी गर्मी से बचाव हो सके। और जब भी मैंने तेज धूप के मायने आप बाहर जावा तो छत तो लेकर के निकला, और आंख भी आपनी प्रभावित नहीं हुए इसके लिए धूप वाले चश्मे को प्रयोग आप कर सका। हाँ, थोड़े समय के महीन भेणो थोड़े थोड़े समय के अंतराल के महीन आप शीतल जल, नींबू की सिकंजी या नारियल पानी पीता रहा। और कोई भी आपने घर के महीन है या आपनों कोई भी कार्यस्थल है या कठे भी जावा, तो बैठे अगर सूर्य की सीधी रोशनी आ रही है तो बिना रोकने के लिए आप सूती पर्दो है भी को प्रबंध करा। और भेनो घर के मायने आप अपना पशु भी रखा बांके

बीमारी भी हो रही है तो बां को आप विशेष ख्याल रखा, लू से बचाने की कोशिश करा, और अगर लू की चपेट में आ भी जावे तो आप अपने नजदीक में जो राजकीय चिकित्सा घर है बैठे आप डॉक्टर ने दिखावा। और ई मौसम के मायने ज्यादातर भेड़ो आप जो तेज धूप को टेम है बिन टालने की कोशिश करा जी। हाँ, दोपहर के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करा। अगर कोई जरूरी काम होवे तो अपनी पानी की बोतल या अपनी सूती वस्त्र अपना अपनी व्यवस्था करके फिर बाहर जावा। और बच्चा ने देखो बहनों, स्कूल से आने के बाद में नंगे पैर या खुले बदन धूप में नहीं घूमने देवा। अत्यधिक प्रोटीन युक्त जो भोजन है या बासी भोजन है भी को सेवन भी नहीं करा। धूप के मायने गाड़ी खड़ी करेड़ी होवे या अपना जका पालतू जानवर अकेला धूप के मायने नहीं छोड़ना। कई बार बहनों आपा की करा के तेज धूप के मायने बच्चा गाड़ी में भी खेलनो चाहे और गाड़ी बारे धूप में खड़ी है तो गर्म हो रही है, तो छोटी मोटी जकी गलतियां बच्चा करे बांको आपा विशेष ध्यान रखा। और एक अलावा भी बहनों आपा सुबह शाम जो हल्को भोजन है भी लेवा। और एक गर्मी के मायने जका मौसमी फल है बांगो ज्यादा सेवन करा और पानी है वो ज्यादा से ज्यादा पीवा। और चाय कॉफी ए जका है जिया कोई भी आपा सॉफ्ट ड्रिंक पीवा बांगो ज्यादा सेवन नहीं करा, क्योंकि ये गर्मी के मौसम के मायने आ चीजाओं आपने पेट में गैस बने और कोई भी जो भोजन करा भी में एपच की समस्या आपने हो सके। आप ज्यादा ज्यादा पानी पीने की कोशिश करा और तरल जगह पेय पदार्थ है बांको सेवन ई गर्मी के मौसम में ज्यादा करा। भेणु बातचीत तो आप और भी कर सा, एक बार थारो करावा बीच में मनोरंजन।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360977।
2: फेरू स्वागत है बहनों कार्यक्रम में। अब आप बात करा बचत निवेश और पैसा क्या वास्तव में खुशियां खरीद सकता है। बहनों वो बहुत ही गहरो विषय है और इकी आप अपने

अनुभव के आधार पर बात करा तो बचत और निवेश या पैसों सीधे तौर पर खुशी को नहीं खरीद सके, लेकिन आपने खुशहाली और तनाव मुक्त जीवन जीने की एक तरह से आप आधारशिला मान सका। हाँ भेणों, आपने ही भेणा के हाथ में ही हो के घर को जिको महीने को जितना खर्चो हुए भी में से आप अगर कुछ पैसा बचा करके रखा और आगे के भविष्य के लिए बचावा तो भी शू आपने भावी जीवन ने आप खुश बना सका। हाँ अगर आपने कन कुछ पैसा बचाया हाँ तो अचानक कोई भी आपने जरूरत के समय आप काम में लेवा तो आपने मन में यह रहे कि आप कुछ बचत कर रहा हाँ तो कोई भी तरह को तनाव आपने दिमाग में को नहीं आवे। भेणो कहने को मतलब है कि अगर आप शुरुआत से ही बचत शुरू कर दें तो जिको पैसों बचा रहा हाँ भी से आपनो तनाव कम कर सका। हाँ आपनी जिकी बुनियादी जरूरतें हैं जहाँ मूलभूत आपनी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान इके लिए आप हर तरह कोशिश करा और अपनी जरूरतें ने पूरी करा जिसे आपनो जिको मानसिक तनाव है वो कम होवे। और अगर आप कुछ खर्चा कम करके बचत या निवेश शुरुआत में ही आप करन लग जावा तो भेणों कोई भी आपात स्थिति आवे यानी आपा ने जब अचानक कोई चीज की जरूरत पड़े तो भी टाइम आपनों बचाएडो पिसो काम में लेवा तो आपा ने बहुत ही खुशी होवे। आपा ने कोई कन से उधार को नहीं लेनो पड़े, मन में तनाव कौन बने कोई तरह को। और भेणों अगर आप थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी बचत करता करता आपने कन बचत कर लेवा तो वो पिसो है जिको कई बार आपा सोचा कि आप बाहर जावा काम काजी हाँ और घर को काम करने के लिए आपने कन टेम को नहीं तो भी के दौरान भेणों घर की जिया साफ सफाई है या और आपने बारे कुछ छोटो मोटो काम है वो आप कोई अन्य व्यक्ति की मदद से कर सका। हाँ और वो समय बच्चे जिको आप अपने परिवार की या अपने पसंद को कोई काम करने के मायने लगा सका। तो कहने को मतलब वही है कि भेणों पैसे से आप समय भी खरीद सका। हाँ और बचत और निवेश की जिकी आपनी शुरुआत की प्रक्रिया चल रही है बिकमाइन भेणों लगातार बचत करने से आपने जिकी आपनो भविष्य है बिना सुरक्षित कर लेवा और भविष्य की जरूरता ने देखते हुए आपने मन में एक तरह से आत्मविश्वास भी बने डो रवे और मन में एक तरह की खुशी भी होवे कि आप 5 रुपया बचा रखा हाँ तो वह आपने भविष्य के लिए आपने काम आसी। और कोई भी जहाँ अपना सपना है बाने भी पूरा कर सका। हाँ भेणों जहाँ बच्चा है वह भी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो बच्चा की घूमने की भी इच्छा हुए तो भी टाइम भी आपनो बचाए डो जो फंड है बिना पा काम में ले सका। हाँ और भेणों कई बार आप देखा के आपने महीने की जिकी आय है वह 1 लाख के बराबर है तो भी दौरान आप गाड़ी भी खरीदा कई बार और फोन भी लेके आवा तो एक तरह से आपने लिए अस्थायी खुशी है। और आपा कोई भी चीज या बच्चा ने घुमा करके लिया रहा हाँ या कोई भी पारिवारिक प्रोग्राम करियो है और वो बचाएडो पिसो आपा भी टेम काम में लियो है तो भेणो बिशु आपने मन के मायने आपा ने और दुगुनी खुशी हो गए। इके अलावा भेणो कई बार आपा देखा के आपने कने आपा पिसो बचा लियो और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है बी की आपा मदद करी या कोई भी आपने घर के मायने आपा कोई प्रोग्राम करो और कोई ने भी जहाँ मंदिर में जरूरत है या कोई भी गांव के मायने सार्वजनिक कोई काम करो जा रहे हो है और भी के मायने आपने सगला को सहयोग हो गए भी टीम अगर आप थोड़ो भी दान देवा तो भी से आपने मन के मायने एक तरह से बहुत ही अच्छो आत्मिक संतोष मिले है। तो कहने को मतलब वही है कि भेणो पैसा है जिका आप बचावा तो पिसो एक इयाल को उपकरण मान के चाल्स का आपा कि अगर समझदारी से आपा बचायो है या पिसे को निवेश करियो है तो वो आपने जीवन की उच्च गुणवत्ता ने बनाने में बेहतर होवे और अपनी खुशियां ने बढ़ाने को एक तरीके से जरियो बन जावे। तो भेणों कहने को मतलब वही है कि आपने भविष्य ने सुरक्षित रखने के लिए या भविष्य ने खुश बनाने के लिए आपने बचत शुरुआत में ही शुरू करनी चाहिए और आपने बच्चा ने भी छोटी छोटी बचत से आपके भावी जीवन के लिए बचत करने की आदत है जैकि डालनी चाहिए। भेणों बातचीत तो आप और भी कर सकें एक बार बीच में फिर करा दें थारो मनोरंजन।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: भेणो फिर स्वागत है कार्यक्रम में। अब आपा बात करा आपसी विश्वास की। किसी का विश्वास न टूटने दे। भेणो आपा मान के चला कि ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है विश्वास, और विश्वास ने कमाने में आपा ने वर्ष लाग जावे और खोने में कुछ ही पल। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि भेणो जो भी काम करा आपा, और कोई भी काम कोई के विश्वास पर करा, तो आपनों जो को आपने परिवार, रिश्तेदारी, अड़ोसी पड़ोसी, आपना जो भी संबंध जगह के सागे हैं, तो आपनों अगर आपसे विश्वास बनेडो है तो आपने कोई भी दूसरे की सहायता की जरूरत कौन पड़े। और जीवन के नेतृत्व के मायने बहुत बड़ो बदलाव ला सका हाँ। और ए रिश्ता सगला है जिसका अपने लिए एक महत्वपूर्ण पहलू का समान हो है, क्योंकि अगर आपा कोई भी जिया अड़ोस पड़ोस हो, आपने घर परिवार को नेतृत्व करा, तो भेणों आपने कमजोरी त्याग करके साहसी बढ़ने की जरूरत है। और जीवन के मायने याल को कौन है जिके को भरोसो आज तक टूट्यो को नहीं। तो कहने को मतलब है कि इस शब्द के मायने जा कर के देखा तो भेणों बहुत गहराई छुपेड़ी है। आपा एक दूसरे को विश्वास करा और एक सामान्य सी अच्छाई के ऊपर आपा अगले पर विश्वास करना शुरू करा, और देखा कि आपने आपस के मायने एक दूसरे को व्यवहार जीत रखे। लेकिन जब कोई भी दिन आपने सामना आवे, कोई परिस्थिति आवे, या एक दूसरे की सहायता करने को जब टेम आवे, तो बी टेम अगर आप सामने वाले को साथ नहीं देवा, या बी टेम भी को विश्वास है जब नहीं बने डो रवे, तो बहनों एक पल लगे टूटने में। तो अपन आपनों जो आपसी विश्वास है भी के लिए हर पल प्रयास करना चाहिए। और कई बार देखा बहनों के अगर आप घर के मायने बड़े

बुजुर्गों को सम्मान करा, औरबा को हर एक काम टेम पर करा। औरबा के सागे अपना बहुत बढ़िया संबंध है, यानी घर के मायने एक बुजुर्ग के बलबूता प्राप्त हो, जो सगलो घर परिवार है वो चल रहे है। तो बहनों छोटा बच्चा हमें और घर के मायने अपनी जी की छोटी बहना में, तो बने देखने में ही आपसी विश्वास मिले और वे भी विश्वास ने कायम रखने की कोशिश करें। तो कहने को मतलब वही है कि बहनों आपने खुद के हाथ में वे आपने परिवार के केंद्रीय स्तंभ के रूप में पावा और भी आपसी विश्वास की नींव ना पा, आपने घर की नींव से उदाहरण के रूप में समझ के चला कि आपने जिकी रिश्ता को आपसी विश्वास जद ही बनेडो रह सके, कि जद आप जरूरत के समय एक दूसरे के काम आवा। और घर परिवार के मायन भेनों आप याल को माहौल रखा कि ओ याल को विषय है कि रिश्ते की जिकी नींव है बा कच्चे धागे की तरिया है। और भेनों एक कहावत भी है न, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। तो बहनों अगर आपने आपसी विश्वास की नींव अगर टूट जावे तो बा आपा वापस भी जोड़ा तो भी कमाइन आपने थोड़ो सो मन मुटाव आपस में बन जावे, क्योंकि अगर जब भी कोई काम पड़े तो जल्दी सी आपा विश्वास को नहीं कर सका। तो आप अपने रिश्ता में मायन जो विश्वास है भी की कड़ी कदी आपा टूटन नहीं देवा। विश्वास अगर रिश्ता में बनेडो है तो विश्व बहनों सुरक्षा सम्मान और प्रेम को माहौल अपने घर परिवार में बनेडो रहे और अपना जगह रिश्ता है वे भी हमेशा आपने हर जरूरत के समय आपनों साथ निभाने के लिए तैयार रहे। आपने आपसी विश्वास कमाने के माइन बहनों वर्षों को समय लाग जावे और जब छोटी सी बात पर अगर आप आपस के माइन विश्वास तोड़ लेवा तो भी न खोने में कुछ ही पल लागे और अपनी भावना ने भी टाइम याल की चोट लागे कि बहनों जीवन भर आपा भी बात ने भूल कौन सका। बिगो परिणाम है जिको आपने सामने आवे तो आपने मन की जिकी भावना है वह टूटता देर कौन लागे। तो बहनों कहने को मतलब वही है कि आपने बच्चा ने भी आप अच्छी शिक्षा देवा, विश्वास बनाए रखने का कुछ तरीका आपने बच्चा ने आपा सिखावा। बचपन से आपनी सोच रहे कि बच्चा ने अच्छी स्कूल में भेजा, अच्छा संस्कार देवा। पुराने टाइम के माइन बहनों संयुक्त परिवार हो तो भी के मायने मोकला सदस्य होता, बा के बीच के मायन बच्चा बड़ा होता तो कई बार बुजुर्ग अच्छी कहानियां सुनता, कहानी के माध्यम से भी बान अच्छी सीख मिलती और एक दूसरे के प्रति लगाव देखने में मिलते, तो बच्चा ने बहुत सारी जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हो जाया कर। तो आज के ई टीम के माइन देखा एकाकी परिवार है और जरूरी भी है बहनों के कोई अपना भाई लोग हैं वे काम धंधे के लिए बारे भी रमे तो वे आपके परिवार ने सागे रखें। तो भी टाइम देखा बहनों के कोई भी आपनो पारिवारिक फंक्शन हो या कोई ब्याह शादी को कार्यक्रम हो तो बच्चा ना पा जरूर ले करके आवा। भी से बच्चा आपके परिवार ने जाने, बड़े बुजुर्ग ने जाने और हर मान लो आपनो जो को ग्रामीण माहौल है वो भी देखने में मिले बच्चा ने। और शुरुआत से बहनों बच्चे की स्कूल को आपा ध्यान रखा कि इन्हें अच्छे स्कूल में डाला तो घर परिवार को भी आपनो वो दायित्व बने के माने हर छोटे से काम के मायने ईमानदारी बरतनी सिखावा, वे झूठ नहीं बोले, कोई के सागे भी विश्वासघात नहीं करे और कोई ने भी आपा देखा कि वे झूठ बोल करके अगर आपको विश्वास खोवे तो भी बच्चे के ऊपर फिर सब की अपनी नज़र बन जावे। और माने छोटे से हूँ आपा आदत सिखावा के स्कूल भी जा रहे लेकिन छोटो मोटो घर को कामकाज करनो सिखावा, यानी छोटे से काम को वादो बैक करे ओके वो काम है जिको मैं कर सकूं हूँ। तो छोटे से काम की जिम्मेदारी बने बहुत बड़ी चीज सिखावे और कोई भी बात आप आपस में करा तो भी मैं पारदर्शिता रखा। बहनों बच्चा ने आपा कोई काम बतायो है तो भी कमाई ने स्पष्टता रखा कि इतने टाइम कमाई ने इन निर्धारित समय में तना वो काम करनो है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान सिखावा और आपनो जो को आपसी व्यवहार है भी कमाई ने आपसी प्रेम सिखावा। और बहनों हमेशा बच्चे ने आपा दूसरे की भावना को आदर करने के लिए प्रेरित करा। तो विशु के कि अपना बच्चा भी शुरुआत से आपसी विश्वास ने कायम रखे, अच्छी शिक्षा बने परिवार के माध्यम से मिले
और बहनों एक दूसरे की भावना की कदर अगर आप करा तो आपनों आपसी जो विश्वास है वो अपना आप बनेडो रवे और जीवन के मायने कदे भी आपस में अपने कड़वाहट कुन बने। और कहने को मतलब वही है कि बहनों आपनो जो विश्वास है बिना हमेशा आप बनाएडो रखा और विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है आपनो खुद को व्यवहारशील होनो सहनशील होनो। अब आपने जिकी बच्चियां हैं वे घर परिवार के मायने कामकाज करें और सागे पढ़ाई भी करें तो पढ़ाई करता करता मैंने आपा देखा कि कई बार वांगा परीक्षा को टाइम होवे या आपा देखा कि आज के ई टाइम के मायने बच्चा ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करनी पड़े तो बी के मायने आपा बच्चा को साथ निभावा और बी टाइम के मायने अगर कोई काम आपा वाने कहो नहीं करो जावे तो बा एक बा की परिस्थिति होवे तो बहनों बी के लिए आपा वाने समझावा। और कोई भी काम वे आगे कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के मायने भी अगर वे विश्वास बना करके यानी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो बने कोई भी दिक्कत आगे को नहीं आवे। बहनों कहने को मतलब है कि सकारात्मक सोच रखा अपनी और जो काम कर रहे हैं वो पूरी लगन के सागे करा और परिवार के मायने पर एक दूसरे के सागे इस तरीके से जुड़ के रहा कि एक दूसरे की भावना ने समझ के काम करा और एक दूसरे की भावना ने बहनों आप समझ के चला तो अपने घर परिवार में कदे भी कोई बात न लेकर के कड़वाहट को नहीं आवे। और बच्चा ने भी यहाँ की सीख मिले कि एक दूसरे की बच्चा भी आपस के मायने एक दूसरे ने इज्जत देनो मान सम्मान देनो पने शुरुआत में सीखने में मिले। और बच्चा को स्कूल को भी आप आने के बाद के मायने देखा कि वह आपका टेम पर आपको काम कर रहा है पढ़ाई लिखाई कर रहा है लेकिन आपसी व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए बहनों जब आप खानो खावा तो एक जगह बैठ करके खावा और पढ़ाई के दौरान वह आपको जो काम करो भी दौरान आप 10-15 मिनट या आधा घंटा भी बच्चे ने लेकर के बैठा तो वो हर तौर तरीकों आपने सीख है और बच्चा को भी भावी जीवन है जो बढ़िया बने। तो बहनों अब आप चलता चलता एक बार फिर करावा मनोरंजन।

0: ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। एफएम बैंड के 100.7 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन रिले किए जाएंगे। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing, also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ram Ji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
2: Aaj ke hi din Somnath Mandir ki punarsthapana, ye koi sadharan avsar nahi tha. Agar 1947 mein भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first 3 nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will truly is.
2: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, दुनिया भर की

0: Welcome back to the Midday News. The centre has notified the implementation of the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, VBG Ramji. The Act will be rolled out nationwide from the 1st of July this year. The Rural Development Ministry said the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
1: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat G. Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: To encourage greater participation of women workers, the Viksit Bharat G. Ramji Act incorporates an important provision for childcare support at work sites. A woman worker will be appointed to take care of the children wherever five or more children below the age of five are present. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting of the informal empowered group of ministers constituted to monitor the situation in West Asia. The meeting was held to review the evolving situation in the region. Union ministers Jagat Prakash Nadda, Hardeep Singh Puri, Sarbananda Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh and K. Ram Mohan Naidu attended the meeting. In Himachal Pradesh, six people were killed and four others, including two children, were seriously injured when their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district. The injured have been admitted to Tanda Medical College. Among the deceased, five were tourists from Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district in Himachal Pradesh. The accident occurred in the wee hours today. SP Chamba Vijay Saklani said it was raining heavily in the area at the time of the accident. He added that rescue and relief operations were launched immediately after the incident. Police are investigating the cause of the accident. The country's economy has stayed resilient despite global headwinds. According to an SBI research report released today, the economy is projected to grow by 6.6% in the fiscal year 2026-27. The report also estimates real GDP growth at nearly 7.2% in the fourth quarter of the last fiscal year. National Technology Day is being celebrated today. On this day in 1998, India successfully tested its nuclear bombs in Pokhran, Rajasthan. The day celebrates the country's scientific achievements, technological advancements, and growing innovation ecosystem. More from our correspondent.
2: This day serves as a reminder of the significant role that technological advancements play in the country's progress and development. It memorializes the contributions of scientists, engineers and innovators to India's technological expertise and the launch of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. It also memorializes the sixth global nuclear test, demonstrating India's global position. National Technology Day aims to highlight the role of technology in daily life, encouraging youth interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
4: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
3: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
4: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
5: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
3: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक

0: ने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और

0: आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फ्ली

0: फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
4: It has two wheels.
6: My cycle is pink
4: and mine is blue.
3: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Train, train, train!
2: Do it again, please. I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now, let's listen to a beautiful song on this poem, which is being sung by a lovely little girl, just like you.
7: Just like us.
2: Yes. And you can also hum along with this song while listening to it. Okay?
3: Yes, sir!
2: So here comes the song on bicycle. Listen and enjoy.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते।

0: सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं ने जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ हुसैन निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था। पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है हमारे प्रेरणा स्रोत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जहां आज बहुत से लोग तनाव, अकेलेपन और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अपने भीतर की शांति खोते जा रहे हैं। जब जीवन में वो संवेदनशीलता नहीं पा सकते, तब जो दुख होता है वो उनके भीतर से निकल कर आता है, जो हम एज अ तनाव, अकेलेपन और मानसिक दबाव के रूप में हम देखते हैं। और टैगोर हमेशा प्रकृति के करीब रहने की बात करते थे। वो मानते थे कि प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक है। जब भी हम तनाव से या अकेलेपन से अपने आप को देखते हैं, तो हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। तब हमारे भीतर एक शांति आती है, एक रचनात्मकता बढ़ती है और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टैगोर का ये संदेश बेहद ज़रूरी है कि जीवन को केवल दौड़ मत समझिए, रुकिए, सोचिए, महसूस कीजिए और अपने आसपास की सुंदरता को पहचानिए। सफलता तभी सार्थक होती है दोस्तों, जब आपके साथ मानसिक शांति भी हो। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य युवाओं को गहराई से सोचने की प्रेरणा देता है। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के अनुभव हैं। वो हमें बताते हैं कि जीवन में प्रेम कितना ज़रूरी है, संवेदनशीलता कितनी ज़रूरी है और इंसानियत कितनी ज़रूरी है। आज के समय में जब लोग डिजिटल दुनिया में खोते जा रहे हैं, तब टैगोर की रचनाएं हमें वास्तविक भावनाओं से जोड़ती है। और जब भी हम उनकी रचनाएँ पढ़ते हैं, वो वास्तविक भावनाएँ हम महसूस भी करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि वो हमें सिखाते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। उन्होंने जीवन के हर चरण में नई चीज़ें सीखी, उम्र उनके लिए कभी बाधा नहीं बनी। उन्होंने चित्रकला भी जीवन के बाद के वर्षों में शुरू की और उसमें भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये हमें सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके भीतर जिज्ञासा है, कुछ करने की आशा है, तो आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नया अपने जीवन में सीख सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और आज के बहुत से युवा ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन टैगोर का जीवन कहता है कि देर तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक हमारे भीतर सीखने की इच्छा है, तब तक संभावनाएं भी जीवित हैं। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, क्योंकि जब तक हम कुछ कर गुजरने की इच्छा हमारे भीतर होती है, जो ऊर्जा हमारे भीतर होती है, उसका सही दिशा में अगर हम उपयोग करते हैं, तब जो संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है हमारे जीवन में सफल होने की, हमारे इच्छा के अनुसार काम करने की। जिस चीज में हमें रुचि है, उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा जीवित हो जाती है। उनकी विचारों में सबसे खूबसूरत बात थी संतुलन की। वो आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि इंसान अपनी संस्कृति और मूल्यों को ना भूले। आज का युवा तकनीकी का उपयोग करता है, आगे बढ़ता है, दुनिया देखता है, और लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, यही उनका संदेश था। युवा साथियों, आज हम ऐसे दौर में हैं जहां प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में कई बार लोग अपनी पहचान खो देते हैं। उनका कहना था कि जीवन केवल दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं है, जीवन का असली उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना है। अगर आप रोज़ अपने भीतर थोड़ा सुधार करते हैं, तो वही आपकी

वास्तविक प्रगति कहलाती है। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी करने के बाद उसका परिणाम जो है वो जल्दी हम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें धैर्य की ताकत सिखाता है। महान उपलब्धियां जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन बनाए रखना पड़ता है, समर्पण हमारा उसमें पूरा चाहिए। तो उन्होंने वर्षों तक लेखन किया, लगातार सीखते रहे और अपनी कला को निखारते रहे, तभी वे विश्व कवि बने थे। तो उन्होंने अपने इन विचारों से युवाओं को यही समझाना चाहा है कि सफलता कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो एक दिन बड़ी सफलता आपको ज़रूर मिलती है। आज की दुनिया में लोग अक्सर केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन टैगोर कहते थे कि इंसान की महानता इस बात से तय होती है कि वो दूसरों के लिए कितना सोचता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे समाज के लिए उपयोग कीजिए, अगर आपके पास शक्ति है तो कमज़ोरों को मदद कीजिए, और अगर आपके पास सफलता है तो आप उसे दूसरों के साथ ज़रूर बांटिए। और अगर आपके पास अपार शक्ति है तो आप उसको अपने जीवन को बदलने में, अपने परिवार को बदलने में, समाज को बदलने में और देश को भी बदलने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर विश्वास जगाना होगा, और ये जो विश्वास है वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि युवा केवल सपने न देखे बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। और केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, आपको कर्म करना पड़ता है, आपकी मेहनत ही आपके सपनों को हकीकत बनाती है। तो अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए। और साथ ही साथ प्रेरणा स्रोत सेगमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर जी के अपने विचारों, उनके जो विचार थे वो अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और तय करें कि हम डरे नहीं, साहस से जीवन जिए, हम नफरत नहीं प्रेम फैलाएं, और अपने हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और देश के लिए सोचें। और भी प्रोग्राम में बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
5: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज के दौर में एक जो शब्द है वो बहुत सुनने को मिलता है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, सेल्फ मेड पर्सन। सोशल मीडिया हो, बिजनेस की दुनिया हो या फिर किसी सफल इंसान की कहानी, हर जगह यही कहा जाता है कि वो इंसान सेल्फ मेड है। लेकिन आखिर ये सेल्फ मेड पर्सन होता क्या है? क्या जिसके पास पैसा हो वही सेल्फ मेड कहलाता है? क्या बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और नाम कमाना ही सेल्फ मेड होने की पहचान है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि असल में सेल्फ मेड पर्सन वो होता है जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को बहाना नहीं बल्कि सीढ़ी बनाता है, जो गिरकर रोता नहीं बल्कि उठकर फिर से कोशिश करता है, जो हालात से हारता नहीं बल्कि हालात बदलने की ताकत रखता है। सोचिए, एक छोटा सा बीज जब मिट्टी के अंदर हम दबाते हैं, चारों तरफ अंधेरा होता है, ऊपर उसके भारी मिट्टी का बोझ होता है, फिर भी वो बीज हार नहीं मानता, धीरे धीरे कोशिश करता हुआ एक दिन मिट्टी को चीर कर बाहर आता है और एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। बस वही कहानी एक सेल्फ मेड पर्सन की भी होती है। सेल्फ मेड इंसान वो नहीं जिसे रास्ते तैयार मिले, बल्कि वो है जिसने पूरी मेहनत के साथ अपने लिए खुद रास्ता बनाए हैं, जिसके पास सुविधाएं कम थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जिसे लोगों ने

कहा कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हमेशा यही कहती रही कि मैं एक दिन ज़रूर करूँगा। और हमने भी दुनिया में जितने भी महान लोग देखे हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी शुरुआत जो है वो आसान नहीं रही है। और एक सेल्फ मेड पर्सन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका आत्मविश्वास, क्योंकि वो जानता है कि रास्ता कठिन है, लोग मजाक उड़ाएंगे, कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर आज मेहनत कर ली तो कल कहानी उसकी होगी। आज का युवा जल्दी सफलता चाहता है, 2 दिन मेहनत करके रिजल्ट ना मिले तो निराश भी हो जाता है, लेकिन याद रखिए, सूरज भी हर दिन धीरे धीरे निकलता है, एकदम से नहीं चमकता है। सेल्फ मेड बनने के लिए हमें 3 चीज़ें जो है वो सबसे ज़रूरी होती है, एक बड़ा सपना, लगातार मेहनत और खुद पर भरोसा। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर है तो कोई भी ताकत है जो है आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और सबसे खास बात ये कि सेल्फ मेड पर्सन कभी किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि संघर्ष क्या होता है, जो दूसरों को गिराकर नहीं, खुद की मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हालात को दोष देना नहीं, बल्कि किस्मत जो है वो उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं, जो हर हालात में अपने आप को डटकर सामने खड़ा पाते हैं। तो बस यही जिंदगी का नियम है, जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जिंदगी में आगे भी बढ़ जाता है। और भी बातें करेंगे खास सेगमेंट में, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और अगर हम बात करें बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता के बारे में दोस्तों, तो वो है नवाचार, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नए प्रयोग जो है वो हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जो समाज और देश समय के साथ नए विचारों को अपनाते हैं, वही आगे भी बढ़ते हैं। आज का युग केवल मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और नवाचार का युग है। अगर हम पुराने तरीकों में उलझे रहेंगे तो समय जो है वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए आज के युवा के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि नवाचार केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, काम करने के तरीके और समस्याओं को हल करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। नवाचार का सीधा सा अर्थ है कि किसी काम को नए और बेहतर तरीके से करना। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम को देखकर ये सोचता है कि क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है, तो वहीं से नवाचार की शुरुआत होती है। आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब कभी केवल कल्पनाएं हुआ करती थी। लेकिन किसी ने नया सोचने का साहस किया और दुनिया बदल गई, और यही हमारे नवाचार की शक्ति है। युवाओं के अंदर भरपूर ऊर्जा भी है और कल्पना शक्ति भी, और कुछ नया करने का साहस भी। इसीलिए नवाचार की सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी से ही की जाती है। आज का गांव का युवा खेती के लिए नई तकनीक अपना रहा है, जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी डिजिटल माध्यमों से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, और ये सब बदलाव हुआ है सिर्फ और सिर्फ नवाचार से ही। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार की बहुत आवश्यकता हम देख सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान खोजने के योग्य बनाना है। यदि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ेंगे तो वो नौकरी ढूंढने वाले बनेंगे, लेकिन अगर वो नए विचारों के साथ काम करेंगे तो वो नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। तो आज स्टार्टअप जो संस्कृति है वो इसी सोच का परिणाम भी कही जाती है, और छोटे छोटे जो विचार होते हैं वही आगे चल के बड़े उद्योगों का रूप ले रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आज पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो पर्यावरण की समस्या भी पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे समय में नवाचार ही समाधान बन सकता है। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण, प्लास्टिक के विकल्प और स्वच्छ ऊर्जा के नए साधन, ये सभी नवाचार के ही उदाहरण हैं। यदि युवा इस दिशा में आगे आए तो वो केवल अपना भविष्य ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि नया करने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए होते हैं, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि नवाचार की शुरुआत जो है वो संसाधनों से नहीं बल्कि सोच से होती है। एक छोटा सा विचार जो है वो भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान आविष्कार साधारण परिस्थितियों में हुए हैं। इसीलिए युवाओं को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटे शहर से है या गांव से है इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि प्रतिभा जो है वो किसी स्थान की मोहताज नहीं होती है, वो कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी नए जो नवाचार है उनका जन्म हो सकता है। और आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से युवाओं के पास सीखने के अनगिनत अवसर हैं। वो

कोई भी युवा जो है वो घर बैठे नई तकनीक सीख सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता है और अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा सकता है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम तकनीक का उपयोग सही दिशा में करें। अगर मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह जाए तो उसका लाभ जो है वो सीमित हो जाता है, लेकिन अगर वही मोबाइल आपके सीखने, शोध करने और नए विचारों को विकसित करने का माध्यम बने तो वो भविष्य बदल सकता है। और नवाचार हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, यही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। चाहे विज्ञान हो, शिक्षा हो, कृषि हो या व्यवसाय, हर क्षेत्र में नए विचार ही देश को आगे बढ़ाते हैं।

जी दोस्तों, आज का खास प्रोग्राम हमारा रहा युवाणी और स्पेशल सेगमेंट था हमारे प्रेरणा स्रोत। दोस्तों याद रखिए, जिंदगी की भागदौड़ में अपने सपनों की आवाज़ कभी धीमी मत पड़ने दीजिए। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दीजिए, आपकी दोस्त शालिनी को नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम जोपवाणी, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे इस केंद्र से हमारी आज की इस सायंकालीन सभा में शेष कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। सबसे पहले बताते हैं हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। शाम 6:10 पर आप सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत।

हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी शाम 7 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य। एक और चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। चर्चा होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बाजार भाव, मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 10 बजे सुनिए गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब आपको बताते हैं हमारे यहाँ से रिले होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। रात्रि 9:30 पर आप सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे आप सुन सकते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम खेल जगत।

समाचारों का रिले हमारे केंद्र से इस प्रकार से रहेगा, शाम 6 बजे आप सुनेगा हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर।

शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर के अंदर से प्रसारित करेंगे। जयपुर से ही आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। समय रहेगा शाम 6:40 का। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनिए News@9। इन समाचारों को हम दिल्ली के अंदर से प्रसारित करेंगे। सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। ये समय है समाचारों का। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई

0: भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the

महेंद्र कपूर और उनके साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके साथियों को, फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब हैं

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। इसके बाद 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासूत्रो भविष्यति। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य

0: पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्यसर्वकारेण बांग्लादेशसीम्नः सुरक्षाप्राचीरनिर्माणार्थं सीमासुरक्षाबलाय भूहस्तान्तरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्रप्रशासनेन 25-2000 विकसितभारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मंदिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मंदिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपितु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भूहस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारत

0: newsonair@gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेन उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 वादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
3: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
4: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में 100% स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन

0: की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है। वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावना बनी है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, मालियों की ढाणी, थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं, खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं, जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना, पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया।

0: को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्यरा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो जावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी जिया सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगों ने याद दिलावे है कि जड़ाऊं जुड़ियो रहवन री सूरत में आई कोई देश लंबा भगत नाई मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर माई राखी चियो। इन माई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प ओ सोमनाथ मंदिर ने ओजो सुधारी चियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या, काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो कायाकल्प करियो जा रियो है और राज्य सरकार ही तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
3: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम सागे देश में हाईवे मैनेजमेंट रो नुओ दौर शुरू भयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा माथे बिना बैरियर वाली तकनीक री शुरुआत कीनी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीक गाड़ियां टोल कॉरिडोरों 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार

0: निकल सकेला और टोल रो चुकारो आपू आप वह जावेला। वह कहो कि इन व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपये रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जनावरा ने बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में रखो जावेला। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल में देश में टाइगर रिजर्व री तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
1: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ा करके 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
0: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू विवरण री अधिसूचना जारी कर दीनी है। इन पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजावेला। इन तेत गावाई हलका में साल में 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद में चालू माली साल में 95,692 करोड़ रुपया रखी जा है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चानी देखभाल रा खास प्रावधान करी चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल ने बधावो देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम परा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर में राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर खोलो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबों जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी का नींव राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थानों अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मारन री दवाइयां और रसायना री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करन बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर में खान पीन री चीजा में जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। इस मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक कानियों आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लाडला माली साल री चौथी तिमाही माए असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माए बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकाईचियो हो। इन बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा में मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात ने ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार ने बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
2: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रा तेत 1 मई उ चल रिया जनगणना रा पहला दौर रा तेत करी जी स्वगणना में लाडला 10 दिन में 6.5 लाख उम्बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। स्वगणना रा मामला में अव्वल जयपुर जिला में 50,000 उम्बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लेनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों री स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान जोग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई उ 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इ बीच बालोतरा जिला में सगला घरा में स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका और सुपरवाइजरां रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरी ओर प्लॉट देवन रे प्रक्रिया शुरू करी ची है। इन तेत 2,500 से 36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क में बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। अरे बे मौसम राज्य रा आतुणी हलका में घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका में आज लू बाजनो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर में 47.3 फलौदी में 46.8 जैसलमेर में 46.5 और बीकानेर में 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करीचियो। कई थोड़ा रात्रि भगत ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करीचियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन रात्रि भगत तापमान में बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू बाजती रेवन री शंका है। इन बीच आवता 48 घंटा में बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का में कठा कठा तेज आंधी सागे छाटो छिड़को वेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला में निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट में आ जावनु 3 जना री मौके ही मौत वेकी। ऐ लोग मजूरी कर पाछा घरां जा रिया हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार दिया जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में हाईवे माथे बिना रुकियां गाड़ियां रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। राज्य रा नौजवाना में विज्ञान और तकनीकी कौशल बढ़ावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुन रहे सगले किसान भाई बहनों ने भाई देवे कानी सु
1: और भाई अरविंद कानी मोकला मोकला
0: राम राम राम राम अरविंद भाई राम राम
1: राम राम किसान भाया राम राम
0: अरविंद भाई बार को जो को बगत है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उन्ने वाले को टेम है वो चालन लाग रही है और

0: गर्मी है ना बात, तो अब उन्यालो है जित गर्मी तो जोर की पड़नी है भाई। गर्मी की बखड़ बाजन लाग रही के भाई जको मिनक है ने कि एक जो मान लियो गहरा मान लियो एसी लागेड़ी हो पंखा चाल रहे हैं कूलर चाल रहे हैं बामी देखो बैठे ने तो बिन तो गर्मी को क्यों एहसास कम हो है। पर जको मिनक जे बारे ने निकले काम धाम करे अपना जगह किसान बहन भाई बे तो देखो खेती बाड़ी को काम है और खेती बाड़ी के काम में मान लियो बन तो बारे भीतरी रहना पड़े खेत में ही जानो पड़े तो बार गर्मी है बात जोर की है और ध्यान से न है कि गर्मी जोर की पड़े। पर कई बार क्यों है कि आप लापरवाही कर दिया और लापरवाही के है कि अरविंद भाई चाहे की काम करता हो आप चाहे वो खेती बाड़ी को काम हो चाहे वो और कोई काम हो चाहे कोई वाहन चलाने को काम हो क्यों कोई काम हो भी मैं लापरवाही है ना बा ठीक काम गुंदे क्योंकि कहने के सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्योंकि मान लो फिर देर कौन लगे तो ये वास्ता अपने ध्यान तो रखनी है। और अब जो मौसम है ना एक ही खास रूप में ध्यान रखनी है खास रूप में अपना जगह किसान बहन भाई ने बेकी है के अबार खेती बाड़ी के महीने मान लियो बोझ डाली को काम है वो भी चाल रही है पहाड़ पूड करने को काम भी चाल रही है और कई अपना जगह किसान बहन भाई ही सिंचित कोई सब्जी की खेती कर रखी है कोई चरी बारा की है कोई और की मान लियो पेड़ पौधा लगा रखे हैं तो बाकी टेटुनी करने के लिए बाकी ख्यात रखने के लिए बमे बगत बगत पर बने देखो आप सिंचाई भी टेम पर करांगा बाकी रुखाड़ी भी करांगा तो काम तो करना ही पड़े। और आप की है कि दिन के तो सुधियाँ चल जावा भी टेम तो की है कि आपने गर्मी कौन से दे क्योंकि किसान की है कि सुबह जल्दी उठे अंधेरा ही उठ जाए और झांझर गई कलेओ चेप की मान लियो छा राबड़ी को या दही को और भी सागे प्याज घेर की बाजरे की जी रोटी चूर की और बाद को खा की जानी चाहिए क्योंकि गर्मी को टेम है। और सुबह तो आप मान लियो कलेओ करके दिन के जल्दी निकल जावा जब गर्मी गुण से पर आता टेम है ना अपन की है कि अरविंद भाई घर जब आवा ना आप तो ई गर्मी के बगत ने लेके अपने थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि सूरजी जब तपन लाग जाए यार किरणा की है गई कि बचीड़ सो ही बुलावे है क्योंकि गर्मी तेज होता है सीधी चामड़ी गम्मा बैठे। और कई बार क्या हो गया आज या मान लियो आप खेत में मान लियो काम दाम करके और चाल पड़ा जहाँ मान लियो और थोड़ा आराम जो करा जंटी की जोर की छाए अभी के नीचे बैठे हमार फिर तकड़ी तावड़ी में चाल पड़ा तो झपके ही कई बार क्या हो गया माँ की लूरी से निकल जाए चेप जाए तावड़ी लाग जा तो आपने की है कि तावड़े का महीने नहीं चालने पर ध्यान रखनी है
1: भाई दिन के आथन के काम करा और भी सागे सागे काम करा भी टेम आप विशेष तौर थोड़ा ध्यान रखा के लालच नहीं करा क्योंकि दिन के जल्दी गेड़ो वर वो किसान कोई काम लागेड़ो वर लालच कर ले तो देखो क्या कई बार के आप देखा दिन के पहले चाहे 8:30-9 बजे एकदम या हवा बंद हो की और इतो तावड़ो जोर को पड़े के चोटी में चटका सा चले
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: भी तरीके को अगर जे मौसम हो है, हाँ भाई अबार गर्मी को वक्त है तावड़ो देखो पड़े ही वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन सागे हवा चलती हो तो के आदमी तो भी कह सारे को नहीं हो और वो शरीर के लिए भी घातक को नहीं हो
0: बिल्कुल
1: लेकिन हवा एकदम बंद और तकड़ो तावड़ो जब पड़नो चालू हो जाने तो अपन चाहे वो काम है जो को 2 दिन बाद में कर लिया लालच नहीं करनो और अपन दिन के आथन के को जो को वक्त है ना भी वक्त के मायने चाहे कोई काम धाम है जो को खेत के मायने हो चाहे है जो को बोझांगो कोई काम हो चाहे खात है जो को छिदी करने को काम हो चाहे और कोई है जो को भाई सीम को क्यों को बीज को आजकल गणकरा किसान बहन भाई जिका के खेतों के तारबंदी कर रखी तो वह कठन कठे वे तारबंदी भी व्यवस्थित करने
0: बिल्कुल
1: लाग रही तो कोई तरीका की आप लापरवाही नहीं बरता लालच नहीं करा
0: भाई कया सुख है ना वो निरोगी कया हुए तो भाई कया को ध्यान तो रखनी है तो काया को आप मान लियो टेम पर ध्यान जदि रख सकेंगा जब मान लियो भगत सारू मान लियो अपना सारा काम होता रहेगा तो एक बात रिया है अरविंद भाई के भाई बार जहाँ खेतों के मई ने अभी थे भी बता रहा कि भाई बोझे डाली को काम है कोई खाद खुद खिंडाने को काम हो जा भी के सागे एक और जोर को काम है वो काम वो है कि भाई आप खाद नहीं खेत में गिरा दी बिन तो देखो एकदम आप छिद्दी कर दें पूरी एकदम बढ़िया आ नहीं के भाई कटे तो मान लियो एक बिलान को थर चढ़ गई और कटे 4 आंगली आई कटे 1 आंगली आई भाई बिना एकदम बराबर आप खिंडावा और बिना

0: नने के बाद में वो जो डाली मोटो है वो पूरा अपन काट दें और काट की बढ़िया सी एक बांध है ना जो कि पहाड़ अपा मान लो हिंदी में गहरी जुताई और अपा पहाड़ बोला अमूमन तो बा पहाड़ है ना अब बहुत जोर की चीज है और बा ई टाइम की बहुत जोर की है उन्ने आलो है ना। अब आर देखो तापमान है ना वो कठे तो 45 डिग्री हो रही है कठे और ज्यादा है कठे की कम है पर कहना को मतलब 40 डिग्री हूँ नीचे तो कठे ही कौन चाल लियो आपने मान लियो बार तापमान ऊंचो ही चाल लियो है आज भी मान लियो सगली ठोर लुआ बजे ही जोर की तावड़ी मोकलो हो तो अबार जो की आप मान लियो 40-45 डिग्री हूँ जो की ऊपर की गर्मी जो की पड़ रही है ई गर्मी का मायने आप अरविंद भाई खेत में जो की गहरी जुताई जो की पाड़ करा ने बा बहुत जोर की है और आ कोई बात आज की कोनी अरविंद भाई आ की है का आपना जका बड़का बुढ़िया ने बेबी पहली आपने खेतों के महीने अब तो की है का आपने सिंचाई का साधन भी चल गया पानी आपने का नो गयो तो आप मान लियो दो दो तीन तीन मान लियो खेती हो लगी खेती लगभग चालू सी रह लगी भाई जठे सिंचाई होगी धीरे धीरे आपने क्षेत्र में भी सिंचाई को रकबो है वो बढ़ रही है अब देख रहे हैं
1: भाई नवाचार खूब हो लगा।
0: हाँ नवाचार हो लगा तो पहली तो खाली आप मान लो मौसम की जगह बरसात ही जो चौमास हो भी पर आधारित था और पार दो करया करता पहली है एक तो श्याले की पार करता और एक उन्नाले की पार करता और जो उन्नाले श्याले में घटे चूक हो जाती तो उन्नाले ने चूकता को नहीं क्योंकि उन्नाले की पार आजकल तो की है अरविंद भाई आंधी भी आवे ने तो पहली जीती आंधी आती बीती को नहीं आ रही पहली जी की काली पीली जी की आंधी उठ के आया करती है भाई तो यहाँ मानो थे बंदसी होगी एक तरह है उन्नाले का मई नहीं दिन छिपते के सके तैयारी रहती आई रहती है जो छोटा छोटा टाबर आने आज मान लो 20-30 साल पहले की जो बात करा ना आप लगोलग यहाँ मान लो थे 25-30 साल पहले तो गर्मी के महीने आंधिया आती खूब
1: और
0: काली पीली आंधी आती दिख तो की नहीं एक खास बात जरूरी अरविंद भाई काली पीली जी की आंधी आती है ना बांक के महीने के बे आंधी बहुत दूर उठेड़ी होती और बे बमज की गुबार होता है रेत को बारीक बारीक कण होता भी उनके पूरा एकदम अंधेरों से छा जाता तो जे भाई दिन छिपड़ो पहले आ जाती ना अरविंद भाई तो यहाँ लागतो के दिन तो छिप गए होगे हैं एकदम अंधेरो हो जाते और कई टाइम तो की है अरविंद भाई बे आती रोटी खाने के टाइम में शाम को आप जो भोजन करा अपना खानो पीनो करता भी टाइम आती पहली भी टाइम की है अरविंद भाई ज्यादातर जी गाँव की बात कराने तो गाँव में तो कच्चा मकान होया करता ज्यादातर मान लियो आज 30 साल पहले तो छान झोंपड़ा और खुडिया का होता है। अब जो मान लियो कोई छान एक यहाँ की होती जिकी ने रसोई के रूप में काम में लेता या झोंपड़ो जिकन रसोई के रूप में काम में लेता ना बम के हो तो आप जहाँ चूल्हो बालता भाई पहले अब तो गैस चाल गई और मान लियो बिजली का भी चूल्हा चल रही कई नवाचार हो गया बी टाइम के हो गया आपनों सीधो सो काम हो यो सारो काम आपनों प्रकृति पर ही हो तो जब चूल्हे के मायने मान लो भोजन बनाता जब भी भाई धुआं तो निकली तो धुआं निकल तो जब अपनी जगह छान झोंपड़ा की जगह मान लो झोंपड़ों में अगर रसोई बनाता या कोई खुड्डी बना की छोटी बिम रसोई रखता तो बिम की है कि भाई छान का जगह पानी का लटकता ने वो धुआं जा जा की मंगो जो आंधी आती ने जब वो अड़ंगो हाल तो जब देखो खाने में रोर
1: में
0: क्योंकि तो बे आंधी भी टाइम की आंधी जोर की और अब की है आंधियां तो कम आ रही है पर आवन है तो भी आंधी की है अरविंद भाई जी दो घंटा भी जोर की चल जाए ना तो जठे कटाव होने वाली मट्टी है ना बटों एक एक बिलानों ऊपर रेत खा ले है कई जगह तो टावरी आंधी जहाँ दो घंटा चल गई और जो छाप लगने वाली जोर की जमीन है तो अरविंद भाई देखा एक एक फिट मट्टी है ना उठ जाए तो कहने को मतलब वो है कि आप जब खेत में गहरी जुताई करेड़ी हो ई टाइम आप जी मान लियो तोता पलाऊ कढ़ाएड़ो है भी पहली तो क्या है कि शारे पत्ती वाला हल होता और ऊंट जोड़ गया आप लोहा हल बोलता ना भी ने है अभी और शारे पत्ती वाला हल और पहाड़ करता ना बीमी जोर का डगल पट्या करता है सुबह सुबह जागी उन्न वाला तो सुबह सुबह 9 बजे तानी पहाड़ करता क्योंकि बाद में तो सूर्य भगवान तप्पण लग जाता तो अब जबकि अपना तोता बुलाओ गया पहाड़ करा रही जगह डगल पाटन जी दो तीन दिन आंधी जोर की आईडी हो है और भी आंधी गमेन जी रेत अवर बार डगला गमेन रुके तो बाज की रेत उड़ उड़ की जगह आ रही है अरविंद भाई बाकी है क्या एकदम जोर को उपजाऊ पर नहीं है वो यहां मान लो थे बी के मई ने जगह पोषक तत्व इन वैसे ही क्योंकि अपनी जमीन ने एक महीना ऊपर की जगह एक बिलान की माटी है ना आ ही उपजाऊ है ज्यादा
1: भाई आप देखा के खेत के महीने आपने जगह लकड़ी का जगह मिल्डा जगह लगाई डा मैंने बंक के मायने एक एक फुट रेत है जो को चढ़ जाए
0: रुक जाए बंक महीना
1: और एक एक फुट बाज की माटी जी की आकी बटे।

0: जमा हुए ने भाई, जब बारिश को वक्त आवे भी पहले आपा के बस सारी है जो लकड़ा ने एक जगह व्यवस्थित करा।
1: हाँ हाँ।
0: तो किसान भाई देखे के एक एक फुटे माटी खोदनी पड़े जब जागी वह लकड़ी कटे, क्यों नहीं तो वो सही तरीका हुआ है जो बैठा हलकुन लागे
1: भाई, हलकुन लागे बावने में दिक्कत आवे।
0: हाँ। आगे के लिए परेशानी रहे,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल रहे।
0: भी टेम है वह लकड़ी काट गई।
1: हाँ,
0: और बन व्यवस्थित करके भट्ठे जो नाज को बाय जाए ने आपा देखा के आपने आसे पासे कठे ही और जो है ना गोल घेरे के मैंने जटे मिल्डो लगाई है बीजा है जो हर नाज दूसरे ना मजबूत चोखो और बी के जो पैदावार है ना।
1: हाँ।
0: भाई चाहे फलिया का माइन ले लो चाहे फाल का माइन ले लो बाबी निर्वाली देखने मिले।
1: भाई अरविंद भाई की है के जद बटेबाज की उड़की जकी छिणवा माटी आईडी हो ने भी मैं जका आपने नाज ने मान लो प्रोग्रेस करने के लिए भी ने एकदम बढ़िया बनने के लिए जका पोषक तत्व चाहिए ने जका 17 अपना पोषक तत्व है उपजाऊपन का तो बे भी कमाइन हो है। और बे देखो भी ने एकदम बढ़िया मान लियो जद उपजाऊपन माटी मिल गई तो फिर तो देखो नाज जोर को होना ही है। तो कहने को मतलब वो है कि बार जी आप खेतम पहाड़ नहीं करवाई है ना तो अपन पहाड़ करानी बहुत जरूरी है भाई। आप सगली अब बात भी ई वास्ते बना रहे हैं कि अभी पहाड़ है ना वह करनी बहुत जरूरी है क्योंकि पहाड़ का बहुत सा फायदा ही। अब पहाड़ में किए गए एक तो मान लो माटी रुक गया तो चलो एक बात होगी और आजकल के अंध्या की कम भी होगी, अंध्या से आजकल माटी भी की कम आवलागी बी को कारण भी एक रहे है कि पहली जोत ही नहीं भाई बड़ी बड़ी जोत होती है एक तो के किसान बहन भाई आप मोटी जोत होगी भी कि एक साथ सागे मान लो खेचर गुनी होती। अब के जोत छोटी छोटी होगी क्योंकि धीरे धीरे जी मान लो जनसंख्या बढ़ी भी के हिसाब परिवार बढ़िया परिवार का नाके नाके होया तो बाकी जमीन भी नाके नाके बंटी तो भाई जमीन की एक तो खेचल करे लग गया जमीन ने सुधारे लग गया तो जमीन जबकि कटन वाली जमीन है भी लोग एकदम सुधार की बढ़िया कर दी तो भी माटी कम कटे लगी एक तो। दूसरो कारण वो है कि भाई आंधी आवे जब एक माटी कुक्षण कम होने को कि आपने सिंचाई ज्यादा हो लगी धीरे धीरे की मान लो पेड़ पौधा भी थोड़ा बढ़ने लग गया ही तो भी वो फर्क जो है वो पड़े है पर खेत में पहाड़ करना हूं आपने जिकी माटी तो रुके ही रुके बात मान ली पिक आगे की है कि जहाँ खेत की जमीन है ने भी को एकदम मुंह खुल जैसे जब आप मान लो तोता पलाऊ की पहाड़ करी तो भी एक तो जमीन को मुंह खुल गयो पूरा माटी उथल पुथल होगी और अब भी जमीन के मायने जितना भी कीट ही जगह आपने खेत की जिकी फसल है बिना नुकसान पहुंचाना नहीं भाई कीट जू ही आप पहाड़ करा सी बारासी तो बन के है कि जानवर ही ने जगह जानवर के पक्षी मान लो थे जगह आप किसान का मित्र पक्षी हो बे बा कीड़ा ने चुक जैसी क्यों तो और क्यों मान लो लट कीड़ा ही ने बे के है कि जिकी आ गर्मी जोर की पड़ने लग रही है ने तो भी तावड़ी में थोड़ी सी देर में ही भूल से जासी फिर माइन बढ़ने जगह कौन मिले क्योंकि बे नाजुक हुए बे कीड़ा बे ज्यादा तावड़ी सहन गुन कर पावे तो बे भी तावड़ी नष्ट हो जैसी
0: भाई तो जैसी आप देखियो है गैलड़ा दो चार साल में के चाहे चणो हो चणे में भी लट चाहे मूंग मोठ हो बंक माइन भी लट एज की लट और एज का कीट पतंगा जका किसान के लिए हानिकारक हो बंक के लिए रामबाण इलाज है के अबारी तातेड़ के मायने और आप खेत की पाड़ कराओ
1: बिल्कुल
0: ई टाइम की जकी पाड़ कराईडी है बा के हर जगह किसान के फायदो ही फायदो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आज की बीमारी है जो की हर किसान है इनको कटन कटे कोई न कोई रूप के मायने शिकार है भी को कारण वही है कि आप ई तातेड़ के वक्त के मायने अपने खेतों के मायने और पाड़ कौन करा रहा आप जद बरसात आने को टाइम हो सी भी 15 दिन पहले या महीने पहले है जो को पाड़ करावे लग गया कदी करा ले सा भाई आजकल है पाड़ कोई आ तो आत को नहीं के महीने दो महीना को टाइम लगे और एक बह तू करनी है आजकल तो ट्रैक्टर ले जा रातों आत घंटा के मैं पाड़ होगी
1: बिल्कुल।
0: तो बा पाड़ आप लापरवाही नहीं बरता अबार को जो तातेड़ को जो वक्त है ये तातेड़ के वक्त के मायने अगर जी आपने खेत की पाड़ करा तो चोखा तो डगल पट है। और देखो के बंक के मायने जगह हानिकारक कीट ही ने बे ही जगह नष्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना हो अबारी तावड़े का
1: बिल्कुल
0: क्यों ई तावड़े के मायने अगर जे आप देखा के आप ही जे बिना चंपला के बारे निकल जाओ ने तो तिल मिला जाओ जन को ताता तुए का हाथ लाग गयो भी तरीको
1: बिल्कुल।
0: तो बाई चीज है जी की बा जानवर के लिए तो बा जानवर भी मर जा भाई कोई फसल हो भी फसल का मैंने बे आगो आगे बढ़ोतरी को नहीं हो
1: भाई। अरविंद भाई बार तो पानी यहाँ को सो क्यों बारे तत्व ही रहे। अब आजकल तो किए गए सगले मान लो सुलभ शौचालय आप घरा भी मान लो शौचालय बना रखे हैं बे जगह नहान घर बना रखे हैं वहां ऊपर आप टंकी पहली तो के ईंट की चिनकी बनाया करता पर आजकल के स्वार्थ देख लियो है प्लास्टिक की जगह टंकियां वहां आए मिल दिया है और बा टंकियां में भूल हूँ कई बार तो की है अरविंद भाई इतनी जोर की आ तावड़ी पड़े ने भूल हूँ जी आप जी मान लो हाथ धो दिया नीचे तो कई बार तो के हाथ बढ़ने वालों से स्थिति हो जाए इतो जोर को गर्म पानी हुए है तो कहने को मतलब है कि तातेड़ के महीने जी आप खेत में पाड़ कराऊंगा और हानिकारक कीट बारा आऊंगा तो भाई तावड़ी मर जाऊंगा। अब बात एक के बाद में किए गए हर चीज को टेम हुआ है अरविंद भाई के पहली देखो अपना बुढ़िया जब भी पार करन जाता ने जब सुबह 5 बजे चल जाता और खेत में जो ही चानन होता नहीं लाग जाता और सुबह मान लो जी पार शुरू कर देता बे। अब सुबह पार करता ने जो बे तू मान लो अढ़ाई दो अढ़ाई इतनी पार होती बे तो तीन अढ़ाई हो जाती है दो तीन अढ़ाई भरी जाती पार की अभी 9 बजे तक मान लो बाद में तो तावड़ी पड़न लग जाती जोर की तो बी दौरान जी पार कराना पा बी दौरान क्या होगा एक तो सुबह सुबह पार कराने जब अपना जीता भी पक्षी ने बे के अब बे घोंसला मुँह निकले भी टेम और घोंसला मुँह निकले तो भूखा हुए और भूखा होगा ना अरविंद भाई जब आप पार करांगा सुबह सुबह जब भूखा हुए तो बे कीट जगह निकले ने बे पक्षी बन चुक जा जब एक तो वो फायदे हो एक दूसरी बात पूरे दिन तावरी पड़े आ गए जब मान लो कोई कीट जमीन पर रहे हो ना तो वो तावरी नष्ट हो गयो तो और जमीन को उपचार भी हो गयो। अब कई के अपन जो स्वार देख लें जो शाम को टाइम आप पाड़ कराने जो मान लो आप ट्रैक्टर ले गया आप और अपन 5 बीघा में पाड़ करानी है अपनी तो 5 बीघा में 6 बजे ट्रैक्टर ला कीर वो मान लो 7-8 बजे तक मान लो भी पाड़ न कराया हुए। अब देखो भी टाइम पक्षी तो सगला घोंसला में चल जा अब कीट न कौन चुके वो भाई अपना जगह पक्षी ही भाई तो सगला मान लो घोंसला में सो जाए बेचारा रात में भाई पक्षी तो जू ही दिन छिपते गए सागे दिन थोड़ा सा दिखने लगे ना यदि आप देखा भाई चू चू चू चू करके एकदम आपको ढूंढ ली है को नहीं और बी के बाद में मान लो सूरजी है वो भी आपको ड्यूटी पूरी करके छिपना मार जाए भाई है फिर तो आगे चांद उगे चांद देखो शीतलता प्रदान करे रात आ जाए रात में शीतलता हो जाए ठंड हो जाए जब कीट इन भी आराम हो आपका पक्ष आपका जमीन में बढ़ जाए फिर वो तो काम सफल को नहीं हो तो ये वास्ता अपन की है कि उसके बढ़ते पहाड़ है आप बाहर तो ट्रैक्टरों करवा तो ट्रैक्टरों हो जाए तो सुबह मान लो आप पहाड़ शुरू करा और दिन में सुबह पहली अपन पाड़ कर देनी चाहिए ताकि पूरे दिन भरवा मान लो तावड़ी है तो भाई कीट वालों काम है वो सुबह में ही हुआ है ज्यादातर बाकी तो वह पाड़ आपको काम करेगी पर वो एक अपना छोटो सो मान लो कारण बताया कि ई टाइम करा तो ठीक रहे वो फायदा हो रहा है कि भाई कीट ही भाई भी नष्ट हो जाए तो वो अपन ध्यान रखनी है पाड़ कराऊंगा जमीन में देखो एकदम उरली हो जाएगी तो जमीन में नमीज की ग्रहण करने की क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी। एक मोटी बात है आप अभी लट की बात करें लेल्डे टाइम आप देखियो के चौमास के महीना आप देखियो अपनी जी की खरीफ की फसल है इबा में गोजा लटको है ना वो प्रकोप बहुत जोर को रहे हो और आप जी पहाड़ की बात करें ना जो कि लट वगैरह भाई जमीन में ही रहे तो भाई जमीन में आप खोद खोद देखा भाई मूंग है आप ऊपर तो मान लो एकदम बुलडाइडो सो हो रही है भी रोग दिख रो नहीं भी सारा आप जड़ा में खोदा जाते मोटी मोटी लट्टा निकली बाकी भाई बाकी जड़ा ने काट दी है और भाई जमीन में नुकसान पहुंचावे अपनी फसल नुकसान पहुंचावे तो ऐज की कीट ही आगा अंडा मान लियो चाहे भाई कीट अंदर मान लियो भाई नष्ट हो जाए तो आपने किसान बहन बया गए देखो वो फायदो है। एक खरपतवार आपने भात भात का हुए तो खरपतवार को निदान भी आपने ही गहरी जुताई हुए क्योंकि आप जब मान लो जुताई करांगा तो वो खरपतवार को बीज ऊपर आओगे क्यों हालांकि अरविंद भाई की है कि आपनी जी की धरती माता है ना इनके महीने बीज को कोई अंत को नहीं है अभी तो पर फिर भी मान लो कुछ हद तक अपन राहत मिले कि भाई खरपतवार को बीज ऊपर आ रही है तो क्यों तो जानवर चुग रहे हैं क्यों गर्मियों नष्ट हो रही है क्यों मान लो कहाँ का क्या होगा जीवाश्म टाइप का भी जमीन के अंदर रहे हैं ठीक है तो कई खरपतवार यहाँ का होंगे बांगा रेसा टाइप का रहे भाई मान लो फिर बरसात आवे भी के अनुकूल जब मौसम हो जब वापस पनप जाए तो बांको भी मान लो उपचार हो जाए जमीन को एक तरह उपचार हो जाए पूरी अपनी जमीन की आप जब पाड़ करा दें तो वो एक उपचार हो जाए ई बात भी को अपन ध्यान रखना है। और बार के बगत में आप जो बात कराना है तो आपने जिया मान लो के कई किसान बहन भाई सब्जी सब्जियां की खेतियां कर रहा है कहीं तो बने भी आप कहना चाहूंगा कि भाई जी है ताती लू चलन लग रही ने आऊँ अपनी जी की बेलना ही मन बचानी चाहिए अपन मान लो भी के सारे सारे आप जो मान लो जो दोहरा बनाएड़ा हो क्या क्यारी टाइप की बनाएड़ी हुए तो बंक के मान लो आप अथुन न के जी हाँ, सरकंडा को नहीं होंगे अरविंद भाई, सरकंडा
0: उत्तरादी हवा सीधी नहीं लागनी,
1: तो वे आप जे बाकी छाया सी कर दिया तो भी बहुत बचाव है, तो वो आपने करना जरूरी है, बगत पर पानी देना जरूरी है, जे आप खेत में बाहर कोई चरी या मान लो पशुआ ले बी आप कोई हरियो चारो बार रखे ना, तो बीमा भी आपने टेमो टेम पानी देना, क्योंकि यहाँ की लू चल है एक महीने के वो भूल से जा, तो उसके बैठ तक आपने की है कि शाम को टेम है ना वो पानी दे देना चाहिए बीमा, तो पूरी रात पे ठंड भी मिलेगी और वो पानी भी मिलेगा, तो वो लगेगा जब वो ठीक हो जाएगा वो टेटाट करेगा और वो ऊपर मान लो नहीं तो तावड़ों मुड़ जा कि कुछ हो जाए, तो ऐ बात नहीं है, आपको अपने ध्यान रखना है, आपने जगह ननड़िया छोटा छोटा पौधा ले ले चौमासम लगाया बम भी अपने किए गए पानीपात की देनो है, और कोई बोला ज्यादा छोटा पौधा ही ना अरविंद भाई, तो बम पर तो अपन कोई थोड़ी बहुत छाया भी कर देनी चाहिए बाहर, क्योंकि कई बार के तेज गर्मियों भी गर्मियों पौधा कम बढ़े, लेकिन कई बार तेज गर्मी हो ने बा गर्मी ननड़िया जगह छोटा पौधा ही बंद सेज जाए, तो बंक की भी अपन की खेचल करनी है, क्योंकि लेली बार अपन लगाया अपने तो मेहनत करनी पड़ी, तो अपन बाहर जे बंक को थोड़ो ध्यान रख लें, अपन टेम पर थोड़ा पानी डाल दें, अपा के यहाँ पौधो नाजुक है तो भी के चारों मेर आजकल तो किए कोई बोरी भी लगा दी या कोई खींप लगा दी, सगले चारों मेर नहीं लगाओ तो आप आतुनी आतुनी साइड वहाँ की लगा के भी थोड़ी छाया हो ना तो बोलो बचाओ हो जाए, तो ये की बात नहीं है, आपको अपन ध्यान रखना है और बतलाऊं तो आप मोकली कर ली और करनी है, पर की है कि टेम है ना वो थोड़ा मनोरंजन को हो रही है, तो एक लोक रचना है बा आप अपना किसान बहन भाई ने सुना दें पुदीनू, सुनो साहब।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि, विज्ञान, कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा, शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव 9413360097।
2: तो किसान बहन भाइयों, अभी आपां ओ सांतरो सो संदेश सुनो और संदेश ओ पहली अरविंद भाई आपां अपना जगह तुला किसान बहन भाई अपन ने लोक रचना सुनाई पुदीनो और एक महीने पुदीने का मान लियो गीत के माध्यम बताया जा रही है कि पुदीनो है वो स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और गीत भी देखो पुदीनो को सांतरो लागो है। तो पुदीनो बार के एक अपन आपने खान पान में भी अपन शामिल करना चाहिए। आप पुदीनो है वो मान लो आप चाहिए बिने पुदीने को जो मान लो बना की आप जो मान लो भी की शिकंजी टाइप की बनावा ना, आप पुदीनो बांट की भी मैं थोड़ा नींबू मिला लो और थोड़ा सूप मिला लो और जी आपके स्वाद के अनुसार मिला लो, पर कहने को मतलब पुदीनो जानो चाहिए। और एक बात है कि यहाँ भी दूसरी बात के पुदीनो है ना, पुदीने का 5-4 पत्ता आप भी अभी सीधा खासकर पुदीनो स्वास्थ्य के लिहाज में बहुत जोर की चीज है और इसकी तासीर ठंडी भी है और कई प्रकार की बीमारियां इन्हें बन भी दूर करे। और अपा की पुदीने चटनी की भी बात कर रहा लोग गीत के मायने बात हो रही है सिल पर चटनी, तो अपा जो मान लो चटनी बनावा ने तो चटनी भी पुदीने की चटनी भी बहुत जोर की बने हैं। पर कई बार के इतो ध्यान जरूर रखना है कि भाई आप घर जा पुदीनो लेगी जवाई को नहीं रही जाके कह देंगे मन तो पुदीने की चटनी ना लो, जब देखो बातरी गड़बड़ हो जाएगी। तो अपन बातरी भी बिगाड़नी को नहीं है, जब आपने घर पुदीनो पड़े हो अपन ले जाके जाना, जब ही अपन कहना है कि भाई आज तो देखो पुदीने की चटनी बनाओ या पुदीने की शिकंजी बनाओ है, तो कहने का मतलब वो है कि भाई बाहर को जो टेम है ना गर्मी को बगत है एक महीने आपने मान लीजिए पुदीनो है नींबू है आपको भी प्रयोग करना है। बाहर की एक आपने कच्ची करी बहुत हरी है अरविंद भाई, तो जो कि तावड़ी पड़े है ना ये तावड़ी के महीने की है आपने एक तो आ बातरी गांठ बांध लेनी चाहिए के कैरी है ना कैरी की सब्जी तो आप बनावा ही बनावा बिके सागे आपने कैरी को पन्नू बनाना चाहिए और वो की है कि सेहत के लिहाज में बहुत बढ़िया रहेगा। और वो बनाने के लिए कि आप जो मान लो देसी तरीके की जो बात कराने तो आप कैरी ले लिया मान लो मोटी मोटी कैरी देख के ले लिया, आप घर मान लो आरो भी छिलगावा आप घर चुल्लो भी बाला बिक महीना आप मान लो थेपड़ी भी बाला बिम छाणा भी हुए बिम लकड़ी भी हुए, तो वो देखो भात भात की जगह लकड़ी छाणा थेपड़ी हूँ उसको भोबलडो तैयार हुए ना बिम के खीरो तो हुए को नहीं भोबलडे टाइप को हो जाओ और बंग महीने भी वोट की और थोड़ी सी पका की और फिर बक कैरा को पन्नू निकाल की बिंग मैं और मान लियो स्वादानुसार आप जी चीज मिलावा जी मान लियो बिम सिंधो नमक भी मिला सका बिग मैंने और जहाँ जीरो भी मिला सका और जो अपन स्वाद की बढ़ानो है और तो आप की भी मिला सका बिग मैंने थोड़ा सो मान लियो ठंडो पानी बिंग मैं मिला लियो स्वादानुसार बिग मैंने और मीठी चीज है बापा मान लियो कोई खांड वगैरह है बापा बिम गिर की और बढ़िया जो पन्नो आप बनावा ने वो के सेहत के लिए बहुत जोर को है भाई। एक तो वो तावड़ी गुण लागण दे है तातेड़ बिल्कुल ही गुण लागण दे, तो बाहर आ रही बाजार के मैंने खूब सारी कह रहा तो बे जो आप आम को अमरस भी तो खावा शाम को बना की तो भैया दो पैर के महीने ने अपने वो जो कैरी वालों जो पन्नो है वो बना की अपने भी पीणो चाहिए अपना नंडिया टावर टिकनी अपना बूढ़ा माई दी बने भी पीणो चाहिए, तो आप भी ध्यान रखनी है। और गर्मी के महीने क्यों

0: गर्मी को जो टेम है एक महीने खाने के महीने भी अपन ने किया जी पानी वाली जी चीज़ आई ने जिका महीने पानी ज्यादा हो जमल तरबूज है खरबूज है काकड़ी है खीरो है टमाटर ही आंको प्रयोग भी अपन ने की बढ़ानो है। तो आ बातरियों को भी अपन ध्यान रखांगा। और भी के सागे सागे एक बात भी और है कि भाई अरविंद भाई आप खाने पीने की बात तो कर रहे हैं पर खाने पीने वाली जी चीज़ा तो ज़्यादातर तो आप की एक बाजार पर ही आश्रित हो रहे हैं। सगली चीज़ तो आप मान लो आपने खेत में उगा कौन रखी और भाई कहने का मतलब कई किसान बहन भाई सब्जियां लगा रहा कि तो भाई उसके काकड़ी लगा रखी होगी या खीरो लगा रखी होगी या तरबूज लगा रखी होगी पर सेहत तो कौन लगा रखा तो अपन बाजार पर आधारित रहना पड़े है। अपने खेती बाड़ी का काम दाम इबा के लिए भी अपन मान लो बाजार में बहुत सी चीज़ें लेनी पड़े तो इनके लिए कि सरकार है ना आ चाहे कि भाई आपनों जो किसान है ना भी कि मान लो जेब में रोकड़ा भी रहे कई बार क्या होगा जहाँ फसल मान लो बाहर कट डीर जो मान लो अपने उन पीसा हुए पर किसान की कई योजनाएं हैं सरकार की बहुत सांतरी सांतरी खूब सारी योजनाएं हैं भी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है और आज की किसान क्रेडिट कार्ड योजना है नरेंद्र भाई आ किसान के लिए देखो नाम ही देखो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसान की क्रेडिट ने मजबूत करे है। तो आप मान लो वो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो अपन बनानो चीज है और अपना जगह किसान बहन भाई ज्यादातर तो की अरविंद भाई किसान क्रेडिट कार्ड बना रखे भी है हुँ? और जगह नहीं बना रखे ने बन के है गया बनाना चाहिए और बनाना जरूरी भी है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड आप जब बनावा ने तो एक महीने अपन की है कि जो मान लो कम ब्याज के ऊपर और अपन खेती बाड़ी को काम धाम करने भी किसाना ने मान लो ऋण है वो मिल जाए और आज की किसान क्रेडिट कार्ड ने अपना ज़्यादातर तो की है कि अपना किसान बहन भाई की केसीसी कम है के भाई फलानो अरविंद भाई केसीसी बना रखी है कौन बना रखी बातें चीतें तो अपना किसान बहन भाई करे ही तो अपनी जी की सरकार है ना एक महीने मान लो भारत सरकार है बा किसाना ने पर 2% ब्याज की सब्सिडी दे है और 3% फिर और मान लो पुनर्भुगतान या प्रोत्साहन करने के लिए दे तो ब्यू हो जाए यानी ब्याज है वो एक महीने कम ब्याज का महीने पीछड़ा ही बे आवे और जो नियम हो ना बैंक को भी के नियम के अनुसार आपने की है कि पीसा को लेन देन करते रहने तो आपने की है कि ब्याज ज्यादा भी होने लगे और किसान क्रेडिट कार्ड जब आप बनावा और जकी फसलों के लिए मान लो आपने ऋण दे जाए तो भी अपने मान लो किसान क्रेडिट के थ्रू फसलों की भी बीमा हो किसान की भी बीमा हो। अब मान लो जको किसान केसीसी लेडी हो मान लो और तो भी मान लो केसीसी जू लेसी तो भी की बीमा हो सी तो भी की सुरक्षा की भी की जीवन बीमा वा मान लो किसान की होगी सगे कई बार क्या होगा किसान को बीमा का अलग अलग जिसका रूप ही बम अलग अलग रूप मान लो पिसा ही पे मिले तो कई बार क्या होगा जोखिम तो देखो हर चीज में बनी रहे अरविंद भाई है। तो एक तो किसान क्रेडिट कार्ड बना लेंगे जब सौ मोटी जोखिम तो आएगा आप हाथ को नीड़े आपने खाते का मैंने पीछड़ा रहे सी है तो अपन किसान क्रेडिट कार्ड बना के रखना चीज़ें पिसा हुए भी एक महीने तो अब आपने खत्म पिसा पड़ा हुए जब अपने जिया भी जरूरत पड़े ने तो भी अपन कोई कृषि यंत्र खरीदना हुए तो वो अपन खरीद लेवा अपन खेती बाड़ी के लिए बीज खरीदना हुए तो वो अपन खरीद लेवा और भी मान लो किसान के तो देखो पशुधन खरीदना हो वो भी खरीद के लिया इसका जे अपन मान लो कोई ऊंट लेना है वो भी खरीद लिया गाय भैंस खरीद लिया
1: या कोई हजार घर के मैंने जरूरत की जी चीजा ही बे लेनी हो हाँ। कारण का वो कार्ड न हो इसे मौका थोका है जो को कोई का हाथ कौन जोड़ना
0: बिल्कुल भाई कहने को मतलब वो है कि हाथ अड़े को नहीं अपनो क्रेडिट है वो अपनो बढ़ो है बैंक में मैंने पीठ आई अपन जावा जी मान लो कि भाई आज तो अपन की है कि घरेलू कोई मान लो गर्मी को टेम चल रही है और ठंडी तासीर की बढ़िया बढ़िया चीज भी खाने भी खरीद के ले जानी हुए तो भी अपने बैंक में अपना पैसा पड़ा हुआ तो ले जावा। तो कहने को मतलब वो है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना है एक लाभ है वो अपने जरूर लेना चीज है और बैंकों अपने जुड़ना चाहिए और ब्यूँ की है कि जका भी जितनी भी योजनावा ही बाकी भी जानकारी अपने मिलती रहेगी और सरकार की खूब सारी योजनावा ही बंको अपने की है कि ज्ञान है वो लेना बहुत जरूरी है। और बिया तो सरकार है ने वह हर मान लो आजकल तो जगह अपना जगह फोन चल रहे हैं स्मार्ट जगह फोन ही है अंक महीने आप मान लो लिख की भी आप कोई योजना के बारे में जानकारी चाहवा तो वह मिल जा। अब कोई मान लो अब तो अनपढ़ तो बहुत कम ही कोई लोग ही कठे ही कोई हो तो जे कोई आदमी ने लिखनो नहीं आवे और लिखना कोताही कई बार क्यों है कम पढ़े लिखे आदमी हो वो लिखना डरतो कौन पूछे तो ही कमाई ने बोल की पूछना कोई ऑप्शन आवे फोन में तो है।

वो बोल के पूछ लेंगे भाई फलानी चीज योजना के बारे में जानकारी लेनी है, बा ले लिया। अब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो अपन योजना की जानकारी लेनी हो तो स्मार्टफोन अपने कन है तो भी अपन जी मान लो गूगल पर जाकर भी बोलने वालों वो माइक को निशान हो अभी के ऊपर भी दबा की और भी अपन लिख देंगे भाई किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की जानकारी दो तो पूरी जानकारी खुल गई भीम समा जैसी भीम के लिखेड़ी भी जानकारी आवे और भीम वीडियो भी आ जाए वे भी अपन चला के देख सका बात होगी आपने ये फोन की बात है। बाकी सरकार की है इतनी चिंता कर रहा कि है मान लो इतना महकमा किसानों के लिए खुल ले ही वह महकमा में जगह अधिकारी लाग रही बंगन जाके अपना योजनाओं की जानकारी ले इसका संबंधित अधिकारी गन जाकी और अब नीचों नीची गांव में जो आप मान लो योजना की जानकारी अरविंद भाई अपन लेनी हो तो गांव की निचली कड़ी के ऊपर की है खेती बाड़ी में जुड़े हुए एक आदमी सरकार के हर ग्राम पंचायत पर लगा रखी हुई कृषि पर्यवेक्षक हुए वो है भाई कृषि की पूरी जानकारी। अब मान लियो अपा और कठे तो गुंजास क्या पर आपने ग्राम पंचायत का मैं तो अपा कोई काम हो जावा या कद भी जावा तो बटे कृषि पर्यवेक्षक हो है तो अपने कृषि पर्यवेक्षक है भी कन जानो चाहिए अभी का नंबर आपने कन रखना चाहिए भाई आपने जहाँ ग्राम पंचायत में कौन कृषि पर्यवेक्षक लाग रही को अपन ध्यान भी होना चाहिए और किसान के लिए कौन कौन सी योजना आ रही बाकी जानकारी आप भी ले सका हाँ कृषि प्रवेश का नंबर आपने कन अपन रखना ही अपन जब भी जरूरत पड़ी अपन ये हो भाई अपन तो फलानी चीज है बी के बारे में पूछनो है या बीज किसाना ने कई बार की है कि सरकार है ने बा किसाना ने बीज दे और कई बार निःशुल्क बीज है वो किसाना ने दे बी के मैंने कुछ श्रेणी निर्धारित करी हुए कोई बीपीएल ने दे या कोई मान लो और जकी मान लो जकी चिन्हित जगह वर्ग ही कम जकी जमीन है बी के हिसाब में दे दे मान लो छोटा किसान ही मान दे दे वे जो दायरो निर्धारित करेड़ो है भी हिसाब मुझे मान लो बीज दे जा तो वह जानकारी अपन कृषि प्रयोग को ले लेनी चाहिए तो भी का नंबर आपने रखना चाहिए। अब कई बार क्या होगा अपन ध्यान ही को नहीं कौन कृषि प्रवेक्षक है कद बीज भी आवे ग्राम पंचायत अंग महीने वे बीज भी बनते हैं तो बाकी जानकारी अपने कृषि प्रवेक्षक है भी के थ्रू अपन ले सका हाँ है तो एज की सारी जानकारी ही आपको ध्यान अपन रखना बहुत जरूरी है और भगत भगत पर किए गए आप मान लो भी कृषि प्रयोगों जुड़ा रहेंगे तो खेती बाड़ी की सगली जानकारी अपन मिलती रहेंगी है या खेत में मान लो कोई अब तारबंदी जगह नहीं करेड़ी है तो वह जानकारी भी अपन भी कृषि प्रयोग ले सका अपने पटवारी ही बंक न भी आप मान लो पूछ सका बने भी ध्यान रहे अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक ही बने भी मान लो पूछ सका अपने खास रूप में खेती बाड़ी की लेनी है तो कृषि प्रवेक्षक देखो फिक्स है अभी को नंबरियों तो देखो किसानों ने राखनो ही चाहिए है क्योंकि जब भी मान लो शंका दिमाग में कोई चीज आयो भाई कोई प्रश्न आ गयो कि अपन तो वो काम करना है तो बिना आप फोन भी पूछ सका तो जितनी भी योजना इन्हें आप अपना जगह तुला किसान बैंड भाई मैंने आई कहना चाहूंगा कि भाई सरकार है व किसानों के लिए जब मान लो इतनी सोच रख रही है इतनी बढ़िया बढ़िया खूब सारी योजनाएं चला रही तो बामू जगी आपने जगी लायक जगी योजना है अपन जगी को लाभ लेना है तो बी के बारे में मैंने अपन जरूर भी योजनाओं को लाभ लेना चाहिए अपन किसान ने की है कि आगे बढ़ाने के लिए योजना ही तो बतलावन तो अरविंद भाई आपने जारी रहसी पर एक लोक रचना है ना बा अपना इतुला जगह किसान बहन भाई मन और सुना दिया तो सुनो सा लोक रचना।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो किसान बहन भैया, अभी आप वो संदेश सुने और संदेश हूँ पहली एक सांतरो सो लोक रचना ही बना सात बजा पानी डगला राम और साथियों की आवाज में जरूर आपके दाय आयो सी। तो अरुण भाई कार्यक्रम में आगे बढ़ावा तो बातरी अपन बाहर कर रहा भाई के अपन मान लियो खेती बाड़ी की बात कर रहा, अरबी के सागर की है अपन मान लियो फल की रोर की रंग की भी बात कर रहा। तो भाई अपन जब फल खाना होगा ना, जब अपन बागवानी भी करनी होगी, तो बागवानी जब अपन करनी होगी ना अरविंद भाई, तो बिक के लिए की है फिर अपन थोड़ी मदद भी चाहिए। बिक मायने की है कि जो मान लो अपनी जो सरकार पौधा की और की भी ने जमीन ने तैयार करने की भी की सुरक्षा की, जब मान लियो अपने मान लियो बढ़िया पौधा कट्ठे मिलने, तो बा मदद भी अपन मिलेगी यदि बागवानी होगी। और बिक की खेचल किसान की करी है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो आपने एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो बंड है, और वो मान लो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ही ने भी दौरान मान लो 2005 और 6 के महीने एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू करे गए हो। और ई कार्यक्रम के महीने मान लो जगह किसान ही जगह बागवान ही बन मान लो ई योजना को लाभ मिल जाए, जब की है कि बागवानी है बाबड़िया तरीकों मान लो कर ले अपनी जगह परंपरा जगह खेती बाड़ी है भी के सागे सागे की है आप मान लियो जो मान लियो अपने 20 बीघा जमीन है और बिक महीने मान लियो आप 5 बीघा का महीना आप शुरू में बागवानी शुरू कर लिया, और बिक के लिए भी मान लियो 5 बीघा भी की है कि बोल सारी हुए, क्योंकि जब बागवानी वाला बढ़िया आप पौधा लिया तो बाकी पौधा की भी रेट लगे, और बम आप मान लियो कोई ड्रिप सिंचाई को देखा या की देखा बाकी बाड़बंदी को देखा और देखा। तो बिक महीने की है आज की राष्ट्रीय बागवानी मिशन है भी योजना के महीने किसाना ने की है कि लाभ है वो दे जाए। तो जी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना है बहुत ही बढ़िया योजना है, और ई योजना के द्वारा भी आप मान लो जानकारी लेगी अपन की है कि जो को बागवानी को रखबो है ना वो भी अपन अरविंद भाई बढ़ानो चीज है।
2: भाई आपने आसे पास आप देखियो है कि बागवानी मिशन के मायने कठन कठे अपन भी है जो को धरातल के ऊपर देखने क्यों मिले है के भाई अपने आसे पास कई लोग खजूर बाव लग गया,
1: बिल्कुल बाव लग गया, अनार की खेती कर लग गया,
2: कई किसान मैन भाई है जगह अनार चाहे भाई बिन अनार कह दो दाड़ू कह दो, और कई किसान मैन भाई है जगह मिठड़िया बोरिया को नहीं है बडोड़ा।

0: एप्पल बोले,
1: थाई एप्पल बोले, बाकी झाड़ी लगा रखी दो दो चार चार बीघा में, और वह छोटी छोटी झाड़ी हो जद फलाने को टेम हो ने, जद भाई एकदम यार नीचे जमीन के अड़ जाई,
0: बिल्कुल अड़ जाई,
1: इतना ध्यान भी ना का बांगे है जो को चोखा बोरिया लगे रे, देखो बांग के बोरिया को स्वाद, चोखो स्वाद है, और नए बाम कोई कीड़ा को कुछ नहीं,
0: भी कीड़ा वगैरह भी कुनी हो मांग मैंने,
1: तो वो सब कुछ जो को हो रही है, एक एक नवाचारी, और एक कठिन कठे आज की मिशन जो को है राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी कोई देखो फल है जो को अपन देखने मिल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल अरविंद भाई, और राष्ट्रीय जो को बागवानी मिशन है ना, एक मान जो मान लो फल है सब्जियां ही जिकी जड़ वाली जिकी कंदमूल की जिकी फसल ही जहाँ मशरूम मसाला और सुगंधित फूल और नारियल और काजू जितना भी
1: औषधीय पौधा भी
0: औषधीय पौधा भी ही बे के राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मान शामिल ही, और अपन ने की है कि आ चीजा की अब आ चीजा का नहीं भी बढ़नो चीज है भाई, जो मान लो आपने धीरे धीरे की है अपने क्षेत्र में भी पानी है जो को सिंचाई को पानी है वो भी बढ़ो है, क्योंकि जो मान लो सरकार की जगह योजना ही बंग महीने जी सौर ऊर्जा वाला जगह पंप ही भी अपने क्षेत्र में अब धीरे धीरे आप देखने लग रहे हैं, मोगड़ा लागे खेतों महीने प्लेटा खूब सारी आप लागेड़ी देखा, तो बहु भी सिंचाई को साधन बढ़ो है, बिजली का जगह ट्यूबवेल ही भी अपने खेतों में खूब बढ़े ही, और थोड़ो बहुत अपने जिले का महीने धीरे धीरे मान लो सिंचाई को जो नहरी रकबू है वो भी किन किन मान लियो चिनो चिनो बढ़ रही है, तो कहने को मतलब है अपन ने भी फिर आगे मान लियो जो की अपनी परंपरागत जी की फसलें ही बांध छोड़ की, और अपन ने भी आपल्ली जी की परंपरागत ने छोड़ की मान लियो जो की बागवानी की है, चाहे मान लियो सब्जियां की है, चाहे औषधि पौधा की है, बा खेतियां का ने भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ताकि किसान ने मान लियो फसलों अलावा और भी फायदो है वो मिले, तो जरूर अपना जगह किसान बहन भाई ही ई बातरी को ध्यान देसी, और बागवानी का नहीं भी थोड़ा देखो बढ़ेगा तो जरूरी भी है, और बातरी तो अपनी जारी रहसी, एक लोक रचना और सुनिया, सुनो सा लोक रचना।

अरविंद भाई, अभी अपना सांतरी सीज की लोक रचना है लक्ष्मी नारायण जांगीर साथे की आवाज में मारी हेली आ सुनाई जरूर अपना जगह इतुला किसान बहन भाई ही बंगे दाए आई उसी और कार्यक्रम में बतलावन करने तो मन घणो ही करे है पण वगत के आप बंदेड़ा हाँ तो आप मान लियो और लंबी बतलावन तो करके उनकार चलता चलता अपना जगह किसान बहन भाई ने बना आई कैस कहा कि भाई मौसम है ने इको ध्यान रखना यार बार दो तीन दिन मौसम में परिवर्तन भी हो सी कई थोड़ा आंधी आने की भी संभावना है किटे आंधी के सके बिरखा भी आ जाए तो ध्यान रखियो और मिलने तीन आप अपने किसान बहन भाई लेवा सीख और करा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। सबसे पहले सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है आज़ाद देश के गुलाम। गीतकार समीर, संगीतकार लक्ष्मीकांत पैरेलाल।

आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है ये वादा रहा। गीतकार गुलशन बावरा।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोंसले को, फिल्म का नाम था ये वादा रहा। आइए अब सुनते हैं अनवर की आवाज़, फिल्म का नाम है ये इश्क नहीं आसान। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

अभी आप सुन रहे थे अनवर की आवाज़। फिल्म का नाम था ये इश्क नहीं आसान। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उनके साथियों को। फिल्म का नाम है वो जो हसीना। गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वयंवर। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों को। फिल्म का नाम है मेरी जबान, गीतकार अनजान, संगीतकार अनु मलिक। ये प्रस्तुति है कार्यक्रम की अंतिम।

0: इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे News@9। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
5: For the season of Kharif 2026,
6: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
7: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
6: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal.

अब यह सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसके बाद 10 बजे आप सुनिएगा जयपुर से रिले कार्यक्रम खेल जगत।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7117 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरीके से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को

0: आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएंगे, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
1: शुरू हुई मई के महीने में जी,
0: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
1: जी।
0: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
1: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
1: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
1: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है, तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, बट हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइन कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइन करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
1: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार
1: जी। राकेश जी,
0: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने

0: घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज़ कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग ख़राब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की।
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाज़ा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज़्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम दो एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकाल

0: का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
2: नहीं, लवलीन जी, जी आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ। गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
3: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, वो बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है।

0: आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं। तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन लें, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
2: पूछिए। हाँ, सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
3: नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली फ़ोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है। जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, श्रीपाद जाखड़ो बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी हो, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहाँ से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहाँ, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर कहते हैं।

0: तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
3: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, सिलेंडर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
3: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
3: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है। तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी हो,
0: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग आवश्यक मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से है, ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही

0: बुलाना है क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह है या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी ईएलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा है नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत के आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कराटे पर। कराटे एक ऐसा खेल है जिससे न केवल हम अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं अपितु हम अपने स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं यदि कोई मुसीबत हमारे पर आन पड़े। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कराटे की नेशनल चैंपियन अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी कराटे के अलावा बैडमिंटन की एक अच्छी प्लेयर हैं, एक रेफरी एम्पायरिंग का काम करती हैं और भी बहुत सारे खेलों में इनका दखल है। अर्चना जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: अर्चना जी, कराटे पर बात करते हैं, किस तरह से का खेल है कराटे और इसको किस तरह से पहचाना जाता है?
2: कराटे को सबसे पहले आत्मरक्षा के तौर पर पहचाना जाता है कि हम इसमें अपनी रक्षा कर सकें और दूसरों की रक्षा कर सकें। लेकिन साथ ही यह खेल इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है। अलग अलग संस्थाएं इनको करवा रही हैं, WKF की तरफ से होता है, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप के तौर पे होता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, राज्य प्रतियोगिताएं, साथ ही साथ लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
1: कराटे के बारे में कहा जाता है कि काफी खतरनाक खेल है और इसमें चोटिल होने की काफी संभावनाएं हैं खिलाड़ियों की।
2: चोटिल होने की संभावनाएं अब इस समय के दौर में तो बहुत कम हो गई हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं। पहले काफी आज से 10-20 साल पहले की बात करूं तो चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। आजकल एक खेल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सेफ्टी तरीके से हम लोग इसको खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है मारपीट का गेम है, लेकिन मारपीट का गेम नहीं है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का खेल है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में

0: अपने आत्मविश्वास के साथ उन परिस्थितियों का सामना कर सके, वो खेल है ये।
1: जी, भारत में खेल परिदृश्य काफी बदला है और अब काफी तेजी से युवा और यहाँ तक के छोटे बच्चे भी किसी न किसी खेल में आ रहे हैं। कराटे में बच्चों को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए सबसे पहला तो इसमें ये पूछेंगे, और किस उम्र में आना ठीक रहता है कि जहाँ से कराटे की शुरुआत की जा सके?
0: सर क्यों आना चाहिए, पहले भी मैंने कहा है हर बार, खुद को बचाने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को एकाग्र करके उन परिस्थितियों से यदि निकाल सकें खुद को, इसके लिए आना चाहिए। जिसमें कराटे सीखने के बाद हम में एक हिम्मत आ जाती है और हम उन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ अब उम्र की बात करें तो छोटे बच्चे मारपिटाई करते हैं, उसको उनके एक ऊर्जा लेवल को सही दिशा में देने के लिए हमें चाहिए कि हम किस तरीके से उनको करें। आजकल 2-3 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगे हैं और यह पारिवारिक परिवेश है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो हम लोग जो मैं लेती हूँ बच्चों को इसको खेल में, कम से कम 3 से 4 साल की उम्र से बच्चे खुद को अनुशासित करना सीख जाते हैं और वहां से हम इनको आगे बढ़ाते हुए।
1: जी, यानी खेल कराटे एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जीवन अनुशासित होता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है। तो कराटे किसी और चीज के लिए बाद में जाना जाएगा, सबसे पहले डिसिप्लिन के लिए जाना जाएगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को कराटे सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो देखते हैं कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम में क्या है, कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट देगा आपको, क्या इस खेल में हम कोई मेडल पाके या कोई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके हम सरकार से किसी नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो कराटे क्या इस मायने में बहुत अच्छा गेम माना जाएगा?
0: हाँ सर, इस मायने में अच्छा गेम तो है। अलग अलग राज्यों में देश के इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर मैं बेबाक तौर पे कहूँ तो राजस्थान में हम थोड़ा सा काम कम देख रहे हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से खुद को जोड़ के रखती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ। लेकिन अलग राज्यों की बात करें तो नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है और प्रसिद्धि तो मिल ही रही है।
1: जी, कराटे के साथ एक शब्द और अक्सर हम सुनने में आते हैं, जूडो। और जूडो कराटे मिलके एक कंप्लीट जो है सीन उभर कर आता है कि जूडो कराटे एक ही खेल है। जूडो और कराटे दोनों अलग अलग हैं?
0: बिल्कुल, दोनों अलग अलग खेल हैं।
1: जी,
0: मार्शल आर्ट जिसे हम कहते हैं एक विधा, उसके अलग अलग पार्ट हैं ये। जिसे जूडो एक अलग बिल्कुल तकनीक है जिसमें पूरा ग्रैब करके हम लोग तकनीकों के माध्यम से गेम खेलते हैं, जबकि कराटे एक बिल्कुल अलग तकनीक है।
1: जब भी बच्चा कोचिंग के लिए जाता है कराटे की क्लास में, और अभिभावक भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, आज मैंने भर्ती कराया और 2-3 साल में वो रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो कितनी जल्दी हम सीख जाते हैं कराटे को और कितनी जल्दी हम रिंग में उतर कर अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा
0: सकते हैं? सर ये तो हमारे बच्चे पे खुद पे निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके प्रशिक्षक पे। प्रशिक्षक यदि अच्छा है तो कम से कम 3 से 5 महीने में शुरुआती टेक्निक्स उसे सिखा के वो रिंग में उतार सकते हैं खेल के तौर पे। लेकिन बाकी अगर मैं कहूँ तो टेक्निक सीखते सीखते तो सारी उम्र लग जाती है। यह बेल्ट के तौर पे है, 3-3, 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं, उसमें बच्चे को पारितोषिक तौर पे एक बेल्ट दी जाती है। प्रारंभिक स्तर पर वाइट बेल्ट से शुरुआत की जाती
1: जब
0: है,
1: स्टार्ट होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: और ब्लैक बेल्ट धारी को कहते हैं वो पारंगत हो गया।
0: हाँ,
1: सच है?
0: सच तो है। आजकल मैं खेल की तकनीकियों को देखते हुए कह सकती हूँ एक प्रशिक्षक अपने तौर पे 1.5 से 2 साल में ब्लैक बेल्ट दिला देता है।
1: जी।
0: लेकिन सच कहूँ तो मैं आज भी ब्लैक बेल्ट हूँ और आज भी सीख रही हूँ। तो इसमें सीखने के लिए कहीं कोई भी पूर्ण विराम नहीं है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: लगातार सीखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इक्विपमेंट की बात की थी कि अब उतना खतरनाक नहीं है या चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है जब हम इसके सुरक्षा उपकरणों के साथ में खेलते हैं। कितने तरह के इक्विपमेंट कराटे में काम आते हैं और क्या वो कितने कॉस्टली हैं कि हर कोई अफोर्ड कर सके?
0: सर अफोर्ड करने की तो बात है, हम आजकल सारे माँ बाप ब्रांडेड पे जाने लगती हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली तौर पे देखा जाए तो बेसिक तौर पे नॉमिनल चार्जेस पे इक्विपमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें हाथ के ग्लव्स, पैरों के लिए सिन गार्ड, हेड गार्ड, माउथ गार्ड मुंह से बचने के लिए, मुंह में लगाते हैं उसको माउथ गार्ड।

0: रहते हैं, तो ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन मेन मैं कहूंगी बॉयज के लिए ग्वाइन गार्ड है और गर्ल्स के लिए चेस्ट गार्ड, तो उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. और ये हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल 6 से 8 साल के बाद से शुरू कर देते हैं.
1: आमतौर पर ये माना जाता है कि जितनी अच्छी बच्ची की कैचिंग पावर होती है उतना जल्दी सीखता है, फिर भी कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन है कि आप साल में, 2 साल में, 6 साल में कोई कोर्स इतने समय में हम सीख सकते हैं कराटे को?
0: हाँ सर, ये तो है. अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को 6 से 8 महीने ही डालना चाह रहे हैं तो वो बेसिक करके निकल सकता है, लेकिन उसे अगर हमें खेल में डालना है तो फिर लगातार अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है. अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो पारंगत नहीं होंगे. हमने कुछ पहली टेक्निक सीखी है, हमने उसकी कोई तकनीक ने वापस हमने काम करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल किक की बात करें या पंच की बात करें या ब्लॉक की बात करें, इन तीनों को मिला के ही कराटे बनता है.
1: जी,
0: तो अगर हमने बात ही वहां से शुरू करी है कि हमने ब्लॉक करने सीख लिए और छूट गया, उसके बाद नहीं हो पाएगा, फिर वो बच्चा आगे वाली टेक्निक सीख नहीं पाएगा. तो इसलिए एक बेसिक कम से कम 1 से 2 साल का समय तो हर माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए. और इस दौरान प्रशिक्षक अमूमन तौर पे कम से कम 2-4 प्रतियोगिताएं तो बच्चों को खिलाते ही हैं, तो बच्चे की एक झिझक भी निकलती है खेल के तौर पर, प्रति स्पर्धात्मक रूप से कहूँ तो.
1: हर एक खेल, जितने भी गेम हम खेलते हैं, उसमें शारीरिक दमखम एक महत्वपूर्ण है, और हर एक खेल में थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चलता है.
0: बिल्कुल.
1: तो कराटे को आप मतलब दिमाग का खेल मानेंगी या शारीरिक दमखम?
0: नहीं सर, कराटे जो है, मैं आपको बता दूं, मन और शरीर के संतुलन का खेल है. अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है और आप सिर्फ एनर्जी लगा रहे हैं सामने वाले को, तो आपको एक गेम कुमिते बोलते हैं जिसको हम, दो प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं उसमें अगर बात करेंगे और आपने सिर्फ दम लगाया है, तो फिर आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी. आपको वहां पे अंपायर जो खेल खिलाता है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. आपको वहां पे हर बार वार्निंग मिलेंगी, चेतावनियां मिलती हैं, क्योंकि हम जब खेल खेलते हैं तो ये एक सॉफ्ट टारगेट गेम है, हमें फुल टारगेट नहीं कहते. जैसे मैं आपको एक बार बीच में बता दूं, एक और गेम को मैं बीच में लेकर, ताइक्वांडो. ताइक्वांडो फुल कॉन्टेक्ट गेम है जिसमें हम पूरी तरीके से हिट करते हैं और दूसरे आपके अपोनेंट को बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है. सुरक्षा गार्ड उसमें ज्यादा है क्योंकि उसमें किक्स का प्रयोग किया जाता है. हमारे कराटे में किक पंच दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉफ्ट टारगेट टच एंड बैक करते हैं, ये टेक्निक सिंपल मैं हिंदी इंग्लिश बोलूं तो टच एंड बैक ही बोलते हैं, स्पर्श करना है, हिट नहीं करना है. तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहता है, अगर उसने हिट किया है तो फिर उसको चेतावनी मिलती है.
1: ये जो कराते जब रिंग में खेला जाता है तो ड्यूरेशन वाइज इसकी समय निश्चित है या
0: हाँ
1: कुछ जो जिसको कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कितने चरण में ये पूरा हो जाएगा?
0: सर, इसमें दो तरीके होते हैं. एक तो काता, जिसमें हमें सिर्फ टेक्निक यूज करनी होती है, एक बॉन्डेड 4 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, 6 मिनट तक हमें पूरा कंप्लीट करना होता है. उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति उस सारी टेक्निक को जो उसने सीखी है, पर्टिकुलर उनके नाम है अलग अलग, उसको प्रदर्शित करेगा और जज उसके तरीके पे, उसके ड्रेसअप पे, सब पे नंबर देंगे. साथ ही साथ कुमिते जिसे कहते हैं, फाइट, दो प्रतिनिधि आमने सामने होते हैं, उसमें एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चे की एज है उसके हिसाब से टाइम सेट होता है. जैसे सीनियर्स में 3 मिनट का गेम होता है, जूनियर्स में अप टू 1.5 से 2 मिनट का गेम होता है, गर्ल्स में 2 मिनट का गेम होता है, सीनियर्स में भी इस तरीके से, छोटे बच्चों में 1 मिनट, इस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दी होती है.
1: आप काफी समय से बच्चों को सिखा भी रही हैं कराटे और जूडो और पूरी एकेडमी चलाती हैं, तो किस तरह का अनुभव है इस गेम को लेकर, कितना उत्साह है बच्चों में, खासतौर से लड़कियों में और उनके अभिभावकों में भी?
0: सर, मेरे पास बहुत सारे अभिभावक आते रहे हैं और उनका कहना है, मैम हमारी बच्ची झिझकती बहुत है, बोल नहीं पाती है. तो मेरा उनसे कहना है, मैंने कहा आप यहाँ छोड़िए उसको, धीरे धीरे उसमें जब अपनी विश्वास आएगा खुद में तो ये बच्ची बोलना भी सीखेगी और विपरीत परिस्थिति में सिखाएगी भी दूसरों को कि मुझे नहीं टच करना है, या मुझे जो भी

0: परिस्थितियां मैं नहीं कह सकती किस तरीके की, कभी कभी होता है दोस्त ही अपने आप बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वहां भी बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं सच कहूं तो मेरे काफी बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे खेल के जाते थे और अभी वापस कहीं मिलते हैं, अरे मैम आपने हमें कराते सिखाया था, तो बहुत खुशी होती है कि वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए टीचर।
1: यानी जब स्टूडेंट सफलता प्राप्त करके वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु को गर्व होना स्वाभाविक लगता है। कराते गेम में जो रिस्क की बात है, और कई बार लड़कियां सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाती हैं कि इसमें रिस्क बहुत है, चोट लग जाएगी, तो रिस्क कितना हो सकता है, कितना कम किया जा सकता है?
0: सर कम करने की बात तो जो स्पोर्ट्स वे पे है रिस्क तो कम ही है
1: जी,
0: लेकिन पेरेंट्स के दिमाग से रिस्क निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उन्हें लगता है कि अरे हम कैसे करेंगे, बच्ची को चोट लग जाएगी। जो मैंने अभी सेफ्टी गार्ड की आपको बात की थी, वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, और पर्टिकुलर जब गेम खेलने की बात आती है प्रतियोगिताओं की खास तौर से, वहां पे उनका यूज होता है। अब आपको कहूं मैं, अचानक कोई सड़क चलते ये हो रहा है कि किसी लड़की को छेड़ा, तो वहां तो आपको चोट लगेगी भी, और मेरा मानना है आप अगर जितनी खाती हैं, लड़कियों की बात कर रही हूं पर्टिकुलर, उससे दुगनी मारनी चाहिए
1: पावर से।
0: मैं वही सिखाती हूं।
1: यानी लड़कियों की झिझक दूर करने में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है।
0: होता क्या है सर, मैंने अब तक देखा मेरी कुछ बच्चियां बोलती नहीं थी, अरे मैम चोट लग जाएगी। मैंने कहा चलो आप मुझे मारो, जब मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ मैं बहुत अलग तरीके से करवाती हूँ, कम ऑन हिट मी, नहीं मैम आपके लग जाएगी। मैंने कहा अगर आप मेरे नहीं मारोगी तो फिर मैं आपके मारूंगी, नाउ गेट रेडी, देन दे स्टार्टेड। ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग लड़कियों को हमेशा ही नहीं नहीं नहीं इसको नहीं मारना, उसको ये नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, यही सब सिखाते हैं। तो उसमें मानसिक तौर पे उनको चेंज लाने में उनमें बहुत वक्त लग जाता है।
1: तो जब हमने शुरुआत में बात की थी कि जो हम कराते में आते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखते हैं, और देन फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास होती है तो हमारे पास जो सेफ्टी आत्मरक्षा के लिए एक मजबूत हमारे विचार तंत्र मजबूत हो जाता
0: yes.
1: है। आप किस तरह से डिफाइन करेंगी कि वास्तव में लड़कियों के लिए और सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है, इसको हमें सीखना चाहिए?
0: मैं आपको बता दूं, मेरी कुछ बच्चियां हैं जो आई बहुत झिझकती थी, उदाहरण से दूंगी आपको मैं, मैम मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं मुझे नहीं आएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। एक दिन दो दिन धीरे धीरे मैंने उन्हें ग्रेजुअली बोला, और जिस दिन उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने पंच से शुरुआत करती हूँ हमेशा कि बेटा अगर कोई मारेगा तो आप रोकोगी कैसे, घर पे कभी कभी हो जाता है प्यार में भी या गुस्से में भी, माता पिता आजकल नहीं उठाते मगर हमारे जमाने में तो शुरुआत ही थप्पड़ों से हो जाती थी, अगर कुछ गलती किया तो तुम जिस तरीके से हाथ उठाती हो, अगर तुमने हाथ उठाया है तो 101% तुम्हारे अंदर ये तो है कि तुम कर लोगी। वहां से बच्चे जब ये बोलते हैं, मैम आज जब हमने आए यहाँ पे तो हम अपनी पढ़ाई करके आए हैं, हम आज हमने अपने घर के काम भी किए। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को अपने माँ बाप की मदद करो
1: जी।
0: तो वो जब सब करके निकलते हैं तो एक सिंपल शब्द में बोलते हैं, मैम आजकल ना हम अपने सही सारे काम बहुत तरीके से करते हैं। और उसके बाद जब ये सुन के मुझे जो लगता है, और पेरेंट्स बाद में जो फीडबैक देते हैं, बोले मैम हमारा बच्चा आजकल बहुत अच्छे से सारे काम करता है, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनता है, और अगर हमने बोला पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ आने का सबसे पहले लगता है मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मेरे क्लास में सुनूंगी। तो मुद्दा ये है कि हमें उसको, हमारा जो प्रशिक्षक है कोई भी, मैं हूँ या कोई भी हो, वो उसको किस तरीके से प्रशिक्षित करता है।
1: खेलों की दुनिया में आजकल एक और चीज हम देखने में आते हैं, बल्कि एक समस्या के रूप में, कि कई बच्चे जब एंट्री लेते हैं किसी भी गेम में और फिर वो थोड़ा आधा सीखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, या उनका मन के यार मैं गलत खेल में आ गया, मुझे दूसरा अडॉप्ट करना था, ऐसे बच्चे आपके पास में भी आते होंगे, किस तरह से आप उनको समझाते हैं कि इस गेम को रेगुलर करना कितना जरूरी है?
0: बहुत आसान है मेरे लिए, जैसा आपको पता ही है मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं उनको एक ही एग्जाम्पल से देती हूँ। मैंने बेटा आपने अभी एग्जाम क्लास में एंट्री की है तो कम से कम एक साल तो लगेगा ना आपको रिजल्ट आने में
1: जी।
0: जैसे तुम स्कूल में जाते हो और एक साल लगता है तुम्हें रिजल्ट आने में कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा, सफल होगे या असफल होगे, और बीच में छोड़ दोगे फिर तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है

0: लेकिन मैं आपको यहाँ पे खेद व्यक्त करूंगी इसमें जो आपने एक प्रश्न किया है मुझसे, यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे बच्चे से ज्यादा मुझे उनके पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है. अरे मैम ये तो नहीं कर रहा, दो दिन आए. देखिए क्या होता है, कोई भी खेल शारीरिक परिश्रम मांगता है
1: जी.
0: आजकल के परिवेश में बच्चों पे शारीरिक परिश्रम करने की आदत नहीं है, ना ही उनके अभिभावकों को है. मैं बहुत खुल के विचार रख रही हूं अपने इस समय, क्योंकि शायद जो सुने माँ बाप वो समझ पाए. शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो.
1: यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि आप किसी भी गेम में हैं और स्पेशली यदि कराटे में है तो आपको निश्चित तौर पर इसको रेगुलराइज रखना चाहिए.
0: हाँ.
1: और जितना समय लगता है एक क्लास को पास करने में उतना समय इस गेम को
0: समय तो देना चाहिए,
1: देना ही चाहिए. तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हम ये समझ पाए कि कराटे एक महत्वपूर्ण खेल है अपने अनुशासन के लिए, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए और स्वयं को मजबूती से लोगों के सामने रखने के लिए. आज इस संबंध में हमने बातचीत की कराटे चैंपियन, नेशनल कराटे चैंपियन अर्चना सिंह जी से. मैडम आज आप स्टूडियो में आई आकाशवाणी जयपुर के और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं को और धन्यवाद सर आपको भी.
1: आत्मरक्षा के लिए कराते. श्रोताओं अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रही थी अर्चना सिंह.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कराटे चैंपियन अर्चना सिंह से गोपाल लखन की बातचीत। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, इसी दिन इसी समय। नमस्कार।

0: यह था कार्यक्रम खेल जगत, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। आप सुनते हैं एकता का सुर।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है।

देश गाना भी आपने सुना। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: अभी आप सुने थे सुगम संगीत, कलाकार थे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, समाचार पहले हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।